जापान्स पर हैं आप सताक्षी के साथ आपके अपने रेडियो प्रेसवानी 1701 एम पर। देखिए आज की रियलिटी की बात करूं तो सबकी प्रोफाइल परफेक्ट है, लेकिन रियलिटी आज भी ड्राफ्ट में पड़ी है। हर चेहरे पर मुस्कुराहट है, हर डीपी में खुशी है, लेकिन कैमरा बंद होते ही वही स्ट्रेस, वही फ्रस्ट्रेशन और वही अकेलापन नजर आता है। आजकल लोग अपनी जिंदगी जीने से ज्यादा उसे परफेक्ट दिखाने में लगे हैं, और शायद इसीलिए सबकी प्रोफाइल तो परफेक्ट है लेकिन जिंदगी ड्राफ्ट में पड़ी है। तो अपनी जिंदगी को ड्राफ्ट से बाहर निकालिए और उसमें भी छोटी छोटी सी खुशियों से हरियाली लेकर आइए, उसे महकाइए, तब कहीं जाके आपकी प्रोफाइल के साथ आपकी जिंदगी भी मुस्कुराना सीख पाएगी। स्टे ट्यून सताक्षी के साथ इट हैपेंस रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। आप सुन रहे हैं मेरे साथ आपका ब्रेकफास्ट वाला शो।

देखिए, आप लोगों का इंतजार करते हैं कि लोग आपसे मोहब्बत करें, आपसे प्यार करें, या फिर आपके पास वापस लौट कर आएं। लेकिन फैक्ट तो ये भी है ना कि अगर आप ही सबका इंतजार करते रहेंगे तो जो आपका इंतजार कर रहा है उसका क्या होगा। इसलिए भाई उसे भी मौका दीजिए कि आप उसकी जिंदगी में, उसके हिस्से में वापस जा सकें। सिर्फ अपने हिस्से को ही खोजते रहेंगे तो बात नहीं बने। और वैसे भी कहते हैं कि मोहब्बत उसके साथ कीजिए, जिंदगी उसके साथ बिताइए, या फिर इंतजार उसका कीजिए जिसे आपसे मोहब्बत है, जो आपकी फिक्र करता है, जिसे आपका इंतजार है ना। तो कभी कभी किसी और के इंतजार को मुकम्मल करना भी जरूरी होता है। और चलिए उस इंतजार के नाम, जो आपकी राह देख रहा है या आपसे थोड़ी देर बैठकर गुफ्तगू करना चाहता है, उसके नाम ये अगला ट्रैक सुनिए और सुनते रहिए ठापन रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर।

वेलकम बैक, इट हैपेंस में सताक्षी के साथ आप हैं रेडियो ब्रिस्वानी पर। और देखिए, बस एक गलती, जी हाँ, बस एक गलती करके देखिए लोग भूल जाएंगे कि आप में कितनी अच्छाइयां हैं या आपने कितना कुछ किया है। सो इसलिए लोगों को खुश करने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि खुद की जिंदगी को जीने पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप उन्हें कभी खुश नहीं कर पाएंगे और खुद की जिंदगी आपके हाथ से निकलती जाएगी। तो भाई दूसरे तो सेटिस्फाई होने से रहे, चलिए खुद को सेटिस्फाई करके देखते हैं, खुद की खुशी का ख्याल रखते हैं और खुद की जिंदगी को थोड़ा सा खुद के लिए जीते हैं। और सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 FM।

कभी सोचा है कि हम किसी के मैसेज का रिप्लाई देने में एक मिनट भी नहीं लगाते, फिर क्यों कुछ लोग हमारे मैसेज का रिप्लाई देने में इतना वक्त लगा देते हैं? क्योंकि शायद बात टाइम की नहीं होती। जिस इंसान से बात करनी होती है उसके लिए तो 10 सेकंड भी काफी होते हैं, पर जिससे बात करने का मन ही ना हो उसके लिए तो पूरा दिन भी कम पड़ जाता है। इसीलिए हर लेट रिप्लाई का मतलब बिजी होना नहीं होता। कभी कभी उसका मतलब ये भी होता है कि अब आप उनकी प्रायोरिटी नहीं रहे। तो भाई, जिसकी प्रायोरिटी नहीं है जबरदस्ती उसके पीछे क्यों ही भागना। आइए हम आगे चलते हैं आपको लेकर इस अगले ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्थानी, मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस।

0: राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offense, traffic drug offense में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks Atan yaar, I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Digicel, better together.
5: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
6: Tal Event Shan ke saath pesh karta hai Grand Bhajan Night. सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम। ग्रैंड भजन नाइट, कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452-584-926। ग्रैंड भजन नाइट।
7: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
8: Hi, this is Amitabh Bachchan.
9: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
10: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। हाय दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
11: हाय दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
12: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
13: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
14: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
15: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
16: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। जस्ट सेंड $30 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फिजी एंड बी इन द ड्रॉ। और जानकारी के लिए विजिट करें digicelpacific.com।
17: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचे कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

अपील कीती है तां जो हरेक जाति ते भाईचारे दी सही गिणती सामने आ सके ते जाति जनगणना सही अर्थपूर्ण ते लाभदायक होवे। राज सभा विच विरोधी धिर दे नेता खड़गे ते लोक सभा विच विरोधी धिर दे नेता राहुल गांधी ने चिट्ठी विच कहा है कि भारत विच समाजिक न्याय दीआं नीतियां सही आंकड़िआं तों बिना प्रभावित नहीं कीतीआं जा सकदीआं अते वख-वख जातीआं दी गिणती अते उन्हां दी समाजिक आर्थिक स्थिति दा सही मुलांकण उदों संभव जदों जातीआं दी गिणती सही तरीके नाल होवे। कांग्रेस दे सीनियर नेतावां ने जनगणना विच जाति जानकारी दर्ज करन लई अपनाए गए खुले अंत वाले यानी कि ओपन एंडेड प्रश्न दे तरीके ते सवाल भी चुके। उधर डेरा सच्चा सौदा दे मुखी गुरमीत राम रहीम नूं एक बार फिर तो पैरोल दिते जाण दा श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने विरोध किया। उन्होंने बंदी सिंघां दी रिहाई ना होण दा हवाला दिंदिआं इस नूं सरकारां दा दोहरा मापदंड करार दिता है। बरनाला विखे पत्रकारां नाल गलबात करदिआं जथेदार गड़गज ने कहा है कि जिथे बंदिआं नूं बलात्कार अते होर वड्डे वड्डे जुर्मां लई जेल होई होवे ते उन्हां दी गिरफ्तारी वेले कई जानां गईआं होण उन्हां नूं तां जेल विचों इंज छड्डिआ जा रिहा जिवें कोई पिकनिक मनाउण लई आउंदा है। दूजे पासे सजावां पूरीआं कर चुके बंदी सिंघां दी रिहाई नहीं कीती जा रही है। सरकारां दा दोहरा मापदंड है। उन्हां कहा है कि जगतार सिंह हवारा दे माता जी बीमार हन अते सिख पंथ दे नाल नाल इंसानियत अते मनुखी हक्कां नूं तैयार करन वाले सारे लोक ही उन्हां दी पैरोल दी हिमायत कर रहे ने, फिर भी उन्हां नूं पैरोल नहीं दित्ती जा रही। उन्हां कहा है कि एक मां दा अपना पुत नूं मिलण दा बुनियादी हक है ते अजिहे समें विच उन्हां नूं उस हक तों वांझिआ करना बेइंसाफी है। उधर दूजे पासे पंजाब वासियां दे लई चिंता भरी खबर सामने आई है। दरअसल इस बार पिछले सालां दे मुकाबले सूबे विच होई बारिश ते उल्ट मानसून कमजोर रहा जिस कारण भाखड़े डैम दा पानी दा पद्धर काफी घट गया है। इस स्थिति नूं देखदिआं भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने भाईवाल सूबिआं पंजाब हरियाणा ते राजस्थान नूं पीण वाले पानी ते सिंचाई दी साल भरी दी मंग नूं पूरा करन लई पानी दी वरतों बहुत संजम अते समझदारी नाल करन दी चेतावनी दित्ती है। अधिकारियां दे मुताबिक सोमवार नूं भाखड़ा डैम दी गोबिंद सागर झील दे पानी दा पद्धर 1634 फुट दर्ज कीता गया सी जो कि औसत नालों घट्टो घट 25 फुट घट ते डैम दी कुल भरन दी समर्था 1680 फुट तो 46 फुट पिछे है। उधर चंडीगढ़ दे सैक्टर 43 बस अड्डे पिछे आईईडी दे नाल फड़े तीन नौजवानों ने भीड़ भड़के वाली जगह ते धमाका करना सी। मुलजमां दी पछाण तरनतारन दे पिंड सरहाली वासी लवप्रीत सिंह, तरनतारन दे पिंड देबाथ वासी जशनप्रीत सिंह अते अमृतसर दे पिंड तरसिका वासी प्रभजीत सिंह वजो हुई है। पुलिस ने दस्सिआ है कि लवप्रीत अते जशनप्रीत दोवें रिश्तेदार हन। विदेश विच बैठे बबर खालसा इंटरनेशनल दे हैंडलरां नूं मुलजमां ने वध तों वध लोकां वाली जगह दीआं फोटोआं ते वीडियोज भेजीआं सन। सोमवार नूं मुलजमां ने भीड़ भड़के वाली जगह दी पछाण कीती करनी सी। हैंडलरां दे हुक्म ते भीड़ भड़के वाली जगह ते धमाका करना सी। ऑपरेशन सैल ने उन्हां दे कब्जे विच 6 किलो जिलेटिन छड़ा, डेटोनेटर, ऊर्जा स्रोत, दूर तो संचालित प्रणाली, पिस्तौल, मैगजीन अते 5 कारतूस बरामद कीते हन। इह हथियार पाकिस्तान विच बैठे खालिस्तानी अतवादी सतनाम सत्ता उर्फ नौशेरा ने ड्रोन राही अमृतसर भेजे सन। उधर कैनेडा विच सिखा गुरु हरदीप सिंह निज्जर दे कतल मामले विच उस वेले नवा मोड़ आया जदों सिख फॉर जस्टिस ने एक तस्वीर अते कुछ कथित ऑपरेशनल रिकॉर्ड जारी करदे दावा कीता है कि कतल ते मुलजम करण बराड तक भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग वलों किल मनी पहुंचाई गई सी। सीएफसी वलों जारी तस्वीर विच करण बराड दस्या जा रहा व्यक्ति नकदी दी वड्डी गत्थी अते एक हथियार नाल दिखाई दे रहा। पन्नू ने नकदी दी रकम लगभग $1,00,000 होने का अनुमान लगाया है। एसएफजी ने दावा किया है कि तस्वीर विच दिखाई दे रहा हथियार भी निज्जर कतल नाल संबंधित हो सकता है। हालांकि तस्वीर, नकदी दी रकम अते हथियार संबंधी इन्हां दाव्यां दी किसी कैनेडियन जांच एजेंसी वालों जनतक तौर ते पुष्टि नहीं कीती गई है। एसएफजी दा कहना है कि उस कोल मौजूद कथित रिकॉर्डां मुताबिक सितंबर 2023 विच कैनेडा तों कढे गए रॉ दे तत्कालीन स्टेशन चीफ पवन कुमार राय ने कथित हिट टीम लई $3,00,000 तों वध दी फंडिंग दा प्रबंध कीता सी। कैनेडा ने सितंबर 2023 विच राय नूं देश विचों कढ दित्ता सी ते उस समय उन्हां दी पछाण भारतीय खुफिया एजेंसी दे कथित कैनेडा स्थित मुखी वजो हुई सी।
ਤਾਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਹੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ

भी कर सकते हो। साड़ी मेल आईडी bisoni@bisoni.com। इस दे तुसी साडे नाल साडे फेसबुक पेज दे जरिए भी जुड़ सकते हो। साडे फेसबुक पेज है रेडियो बिसवानी 101.1 FM। फिर हाजिर होवोंगे ताज़ा तरीन खबरां लेके। तकली दे इजाजत, सत श्री अकाल।

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich aag lagdi hai. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। सरकार
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: आई आई आई

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी आज बने हुए हो जी थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो दसवाणी 101.1 FM ते जी आर छे संदेश शौलक दे नाल बन चुके हो ते सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत ही सोहना जिहा वेला हो चुके है जी ते इन्हां गल्लां नूं असीं लगाउणा पंजाबी गीतां दा तड़का तुसी की गाना है तुसी जुड़ना है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो रेडियो दसवाणी 101.1 FM साडा फेसबुक पेज है जी ते dasvani@dasvani.com साडी ईमेल आई डी है जरिया जेड़ा तुहानू चंगा लगता है तुसी ओह अपना सकते हो पर साडे नाल देखो गल्लां बातां जरूर करनियां ने फटाफट दे नाल तुसी अपना फोन चुको ते साडे नाल जुड़ना शुरू कर दो ते मैं तां तुहाडे नाल जुड़ी ही रहना गल्लां बातां इसे तरीके दे नाल असी करदे ही रहना बस तुसी जुड़ना बिलकुल भी ना भुलो तुसी जुड़ो फोन चुको ते मैं हुणे वापस आउंदी हां उहनां समां इहनां सोहणे सोहणे गीतां नूं तुसी इंजॉय करो।

बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपनी चाहिए थी रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वंसर वारेम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल तुसी बड़े हुए। देखो मूवीज दी हमेशा गल करदे हुंदे आ क्योंकि मैं चाहनी हुंनी आ कि थोड़ा जिहड़ा हर टाइम हैगा ना, बेशक वह वीकेंड हो बेशक वह वीकडेज हो, जो भी तुसी थोड़ा मूड ऑफ हो, कुछ स्पैशल करना हो, कुछ देखने लिए कंटेंट लभ रहे हो, तो मैं थोड़ी हैल्प करा, तो अज मैं उही काम करूंगी। देखो जेकर थानू भी शार्क वर्गियां सस्पेंस थ्रिलर पसंद आउंदियां हैगियां ने ना, तो अज मैं थोड़े लिए लैके आई हाँ अजिहा ही शार्क मूवीज की लिस्ट, जिन्हां तुसी घरे बैठे हो ओटीटी ते देख सकते हो, इंजॉय कर सकते हैं उन्हां नूं, ते जिस विच सस्पेंस थ्रिलर दे नाल नाल मिस्ट्री भी बहुत वधिया है की है, सच्चियां घटनावां ते आधारित भी हैगियां ने कुछ कु, सारियां ने कुछ कु, ते दसां तुहानूं इन्हां बारे दसदी आं, पर पहला सुनो एक गीत।

0: देखिए शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं, दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365 दैट्स 3273-7365 और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

जी जी अनु जी वेलकम बैक, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रह्मानी 101.1 FM ते जी आर चेस संदेश अलग दिनाल से बने हुए इस लिस्ट दे विच यानी कि शार्क मूवीज दे लिस्ट दे विच सब तो पहला नाम जेडी फिल्म दौंदा हैगा है वो है जी थ्रैश। थ्रैश हैगी है जेडी ए फिल्म ना समंदर किनारे बसे एक अजिहे शहर की कहानी है जिथे भयंकर तूफान आउंदा हैगा जिस दे बारे तुसी सोच भी नहीं सकते। हड़ आ जाता है हड़ के पानी के शहर के अंदर खूंखार शार्क भी बढ़ जाती है ने। इस तो बाद शुरू हुंदा है असल कहानी अगर असल रोमांच की कहानी ते जिवें थोनू हुणी सारा कुछ दसता तो थोड़ा सस्पेंस है जो बिल्कुल खत्म हो जाऊगा। इस लिए तुसी थ्रैश जरूर देखो। हुण तुसी सोच हो गए कि इनू असी किथे देखिए, इस मूवी नू तुसी यानी कि थ्रैश नू असी तुसी देख सकते है क्यों नैटफ्लिक्स से।

0: में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Beyond what you see, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright. Transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are. Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101.9 एम ते जी आर जी संदेश अलग दिनाल सुपने हुए। अगला नाम केड़ा है इस लिस्ट दे विच? ता अगला नाम है जी द रीफ। आई सी 2010 दे विच ता बहुत शानदार फिल्म है। कहानी मैं तुहानू पहला दस दिनी आ। ता कहानी दी जे गल करिए ना तो ऑस्ट्रेलिया दे समुंदर विच एक किश्ती है जिहड़ी पलटन तो बाद ना दोस्तां दा एक ग्रुप गहरे पानी विच फस जांदा है। उन्हां नूं किनारे तक पहुंचण दे लई तैरना पैंदा है पर एक विशाल शार्क उन्हां दा पिछा शुरू कर दिंदी है। ते इह फिल्म इसे दे इर्द गिर्द घूमदी है किवें शार्क तो बचदे ने, कौन बचता है कौन नहीं बचता, इह सब कुछ तुहानूं इस फिल्म दे विच देखण नूं मिलेगा। बहुत इंटरस्टिंग फिल्म है। इस नूं तुसीं नैटफ्लिक्स ते नहीं देख सकते, बिल्कुल भी नहीं देख सकते, इसलिए तुहानूं देखना पैणा है एमाजोन प्राइम वीडियो। You should

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415952660।
1: क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026 डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।

जी जियानू एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो पर सोनी वंसर वन एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल तुसी बने हुए। अगला नाम है जी ओपन वाटर 2003 दे विच आई सी। ए सच्ची घटना ते आधारित फिल्म है कि है एक क्या हाँ जानता है गा जी। मैं तुहानू स्टार्टिंग दे विच कहा सी ना कि कुछ कु फिल्मां सच्चियां घटनावां ते आधारित है ते उहनां दे विचों एक है। तां हुण जे मैं कहानी दी गल करां ना तां कहानी एक कपल दी हैगी है। एक कपल ना स्कूबा डाइविंग दे दौरान गलती नाल समुंदर विच इकल्ला छुट जांदा है। इस तों बाद उसदे चारे पासे शाक जमा होण लगदियां ने ते इसे ते तां कहानी फिर शुरू हुंदी है कि उह शाक तों किवें बचदे हैगे ने क्योंकि शाक तो बच पाउणा ही तां सब तो ज्यादा खतरनाक सीन है। किवें बचदे ने किवें नहीं बचदे इस बारे जानना हुंदा हैगा ते इस नूं तुसीं कित्थे देखणा हैगा इहनूं तुसीं देखणा हैगा है जी ओटीटी प्लेटफॉर्म एमाजोन प्राइम वीडियो ते उत्थे इंजॉय कर सकते हो।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101.1 FM ते जी आरजे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। इस लिस्ट विच अगला नाम केड़ा है गया था, अगला नाम है गया जी द शैलो। 2016 विच आई सी फिल्म बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा सोहनी है, इंटरेस्टिंग भी है। तो इसकी कहानी मैं तुम्हें दस दिनी है। कहानी विच ना एक कुड़ी तट तो कुछ ही दूरी ते बनी एक चट्टान ते फस जाती है। उसके होर किनारे दे विचकार एक विशाल शाक पैरा देरी हुंदी है। एक छोटी जी दूरी नू पार करना एक रोमांच नाल परी कहानी नू जन्म दिंदा है। ते यही तो इसकी कहानी है कि वह कुड़ी किवें पार करूगी, क्योंकि उत्थे तां शार्क है की है। यह कहानी जो तुसीं देखनी है कि किवें की कुछ होगा, तो इसके लिए तुहानू नैटफलिक्स ते जरूर जाना पैना। यह हॉलीवुड फिल्म हैगी है, प्राइम वीडियो ते नेटफ्लिक्स दोनों ते तुसी इसनू इंजॉय कर सकते हो।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट
1: तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हाँ जी, तो देखो वेला तो हो चुक्या है थोड़े तो इजाजत लैण दा, पर जांदे जांदे मैं सोचा कि क्यों ना थानू एक फिल्म बारे होर दस देवां, है ना। तो वो फिल्म हैगी है जॉस। मनिया जांदा है कि स्टीवन स्पीलबर्ग दी इस शार्क थ्रिलर फिल्म तो शार्क वालियां फिल्मां दी शुरुआत हुई सी। कहानी दी गल करिए तां एक पुलिस चीफ, एक मरीन बायोलॉजिस्ट अते एक मछुआरा मिलके एक आदमखोर शार्क दा शिकार करन निकलदे ने। कहानी रोमांच नाल भरपूर है ते इस नूं तुसीं जियो सिनेमा ते नेटफ्लिक्स ते देख सकते हो। ते तुसीं इन्हां फिल्मां नूं जरूर देखियो ते मैनूं रिव्यू दस्सियो, ते बाकी जिन्हां ने देख ली हुई है ते उह वी दस्सियो कि किस तरह दा दी है इसकी कहानी, किन्नी कु ज्यादा होनी है की है। तां चलो फिर तुसी जुड़दे रहो साडे नाल। रेडियो ब्रिसोनी 1017 AM साडा फेसबुक पेज है, जिथे brisoni@brisoni.com साडी ईमेल आईडी है। सारिया जेड़ा भी अपनाना है अपना लो, पर साडे नाल पता जरूर करो। ते मैं तां इही कहना है जी कि कल फिर करते मुलाकात। रखो अपना ख्याल। सत श्री अकाल।

इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट। सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम, ग्रैंड भजन नाइट। कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452-584-926। ग्रैंड भजन नाइट।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए। ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए। इंडिया नंबर 8448381360।

0: एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
0: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
0: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
0: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगाबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशे निव्या के साथ। और सबसे पहला सवाल, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। जी हाँ, सो वेडनेसडे यानी कि मिड वीक आ गया है और मिड वीक के साथ मिड वीक वाली थकावट भी आ गई है, क्योंकि मंडे ट्यूसडे भारी भरकम काम करने के बाद वेडनेसडे में ऐसे फील होता है कि काम भी करना है पर थोड़ी राहत की सांस मिल जाती तो अच्छा होता। बट डोंट वरी, एक दिन और आपको राहत की सांस बहुत ही अच्छे से मिलेगी। वीकेंड आ जाएगा और साथ में रक्षाबंधन भी आ जाएगा। सो आपको तो बताइए कितनी मजेदार सी चीजें आने वाली है। सो इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आप जरा एक हेल्दी रिचुअल के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये हमें हेल्दी रखता है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। जी हाँ, आपने सही सुना, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। कभी भी आपको गुस्सा आता है तो किसी ने आपको कहा होगा कि लंबी गहरी सांस लो, लंबी सांस लो, आपको अच्छा फील होगा। या That's what works. जी हाँ, और ये वंडो की तरह काम करता है। जी हाँ, so what are you waiting for? जल्दी से करते हैं। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ऐसे ही अच्छा फील करते करते अब शुरुआत करते हैं एक बढ़िया से गाने के साथ। और क्या आप गेस कर सकते हैं मैं कौन सा गाना आपके लिए प्ले करने वाली हूँ? गेस कीजिए, कीजिए, कीजिए। जी हाँ, मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ राता लंबिया फ्रॉम द मूवी शेरशाह। अब ये गाना कितना प्यारा है ये मुझे कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं सुना है तो फिर आप खुद ही अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। और अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि मूवी भी बहुत ही ज्यादा प्यारी है और ये एक रियल लाइफ हीरो पर बनी है। जी हाँ, ये एक रियल स्टोरी है। सुनते हैं राता लंबिया और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा मौसम की तरफ, रुख करते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है, अब जरा आपको मौसम के बारे में जानकारी दे दें ताकि उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग्स करें। जी हाँ, तो सबसे पहले 26 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर, बट अभी की अगर बात की जाए तो 26.1 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको हो रहा है 25.2 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, मौसम जो है वो बहुत ही मजेदार है, लेकिन बारिश जो है, जैसे मैंने कहा था कि बारिश होने के चांसेस होंगे, 90% चांसेस 1 mm तक बारिश जो है वो हुई है, और इसी के साथ जो है वो बारिश जो है वो हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो रही है। और आपके इलाके में बारिश हुई या नहीं हुई या थोड़ी बहुत हुई, प्लीज मुझे बताइएगा। इसी के साथ एयर क्वालिटी है एकदम मजेदार। रात के टेम्परेचर की बात की जाए तो 16 डिग्री सेल्सियस यानी कि 16 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप तापमान में देखेंगे। और वहीं अगर बात की जाए कल की यानी कि थर्सडे और फ्राइडे की, तो मौसम जो है वो पूरी तरह साफ रहने वाला है, मुझे बारिश के चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक आपको जाता हुआ नजर आएगा दोनों ही दिन यानी कि थर्सडे और फ्राइडे, और आसमान जो है मुझे क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन आज जो है झमाझम बारिश मैं देख पा रही हूं। तो आप मुझे बताइए क्या बारिश में आपने कुछ किया। इसी के साथ एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हां। असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हां। असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
2: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब आपने प्रोग्राम की शुरुआत देख ली, आपने ये भी सुन लिया कि क्या रहने वाला है मौसम का हाल। अब जरा चलते हैं आपकी फरमाइशों की तरफ, मतलब आपकी रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स की तरफ, क्योंकि धीरे धीरे हम प्रोग्राम में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जी हाँ, गपशप शुरू हो जाएगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, गाने, सब कुछ चलेगा। सो ऐसे में आपके फरमाइशी गीत यानी कि रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स अगर हमारे पास आ जाए तो मजा आ जाए। जी हाँ, एंड दैट इज व्हाट मेक्स इवनिंग वाइब सो सो सो सो सो ब्यूटिफुल। जी हाँ, हमारे इस प्रोग्राम को खूबसूरत आपकी फरमाइशें बनाती हैं। तो जल्दी से अपने फरमाइशें या अपने उन गानों के साथ जो आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं उनको लेकर आ जाइए। आपको करना क्या है, नंबर डायल करना है, नंबर है +91 82 888 71 701। आई रिपीट, +91 82 888 71 701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश या डेडिकेटेड सॉन्ग। और इसी के साथ यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए।

जी दोस्तों, अगर आप भी बर्गर के शौकीन हैं तो आपके लिए मार्केट में शायद एक नया बर्गर आ गया है। जी हाँ, और उसे मैं डिस्टर्बिंग बर्गर कहूंगी, क्योंकि जब आप उसके बारे में सुनोगे कि वो कैसा बर्गर है, किस चीज से बना हुआ है, देन यू विल बी लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। जी हाँ, लेकिन ये सत्य है, मैं सत्य वचन जो है वो आपको बताने वाली हूँ। सो अगर आपको बर्गर्स पसंद हैं और अगर आपको बहुत ही यूनिक बर्गर पसंद है और आपको नई नई चीजें ट्राई करना पसंद है, तो क्या आप ओरियो फ्राइड चिकन बर्गर खाना पसंद करोगे? या ध्यान से सुनिए, ओरियो फ्राइड चिकन बर्गर। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा, व्हाट इन दिस पैरेलल यूनिवर्स आर यू टॉकिंग अबाउट? आई डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट दिस इज ट्रूथ। जी, एंड गेस व्हाट, किसने ये बर्गर बनाया है? ये केंटकी फ्राइड चिकन यानी कि KFC और ओरियो ने साथ में मिलकर क्रिएट किया है। जी हाँ, आप लोग बोलोगे पुअर अमेरिकन्स, नो, इट्स नॉट गोना कम इन अमेरिका। जी हाँ, ये अमेरिका में नहीं आ रहा है, ये जिस कंट्री में आ रहा है उस कंट्री के लोग जो है वो बहुत कुछ नया करते रहते हैं, यूनिक करते रहते हैं। सो आई गेस KFC और ओरियो ने सोचा होगा कि ये इतनी खतरनाक चीजें बनाते हैं, इतनी नई चीजें करते, तो इनके लिए बर्गर भी ऐसा लाया जाए जो इतिहास में, बर्गर के इतिहास में किसी ने ना खाया हो। जी हाँ, सो उन्होंने वही किया जैसे मैंने कहा कि KFC और ओरियो ने मिलकर बनाया है ओरियो फ्राइड चिकन बर्गर। मतलब नीचे बर्गर वाला बेस है, उसके ऊपर फ्राइड चिकन है, लेट्यूस है, सब कुछ है, और ऊपर ओरियो रखा हुआ है। I don't know what to say to that. जी हाँ, मतलब it's not even a burger, it's a disturbing burger. आप लोग बोलोगे कि अगर ऐसा बर्गर किसी ने मुझे खिला दिया ना, तो बर्गर से मेरा विश्वास उठ जाएगा। वेल, आपका नहीं, किसी का भी उठ जाएगा। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, चलो, बट द थिंग इज कि जो भी चिकन बर्गर पसंद करते हैं या ओरियो पसंद करते हैं, क्या मिक्सचर बना के खाना पसंद करोगे आप जैसे कि इन्होंने बनाया है? जरूर बताइएगा। और क्या लगता है आपको, इस बर्गर की रेटिंग्स कहाँ तक जाएंगी, वो भी बताइएगा। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए, लेकिन वेट, मैंने आपको ये तो बताया नहीं कौन सी कंट्री में आ रही है, चाइना में। जी हाँ, या अमेरिका या किसी और कंट्री में नहीं लॉन्च किया जा रहा है, चाइना में लॉन्च किया जा रहा है। आप लोग बोलोगे तभी कह रही थी निव्या तुम कि जिस कंट्री को सब कुछ नया यूनिक करना पसंद है, उनके लिए बर्गर भी यूनिक है, लेकिन बर्गर यूनिक इन अ वेरी बैड वे। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, तां जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। इह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड्ड के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji nu on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
5: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों, आपने गाना तो सुना होगा, एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे भाई, बदले में यूपी बिहार ले ले। और आई डोंट नो कि इसके लिरिक्स मैंने थोड़े गड़बड़ कर दिए हैं या नहीं, बट फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है और वो आप तक पहुंच गई है। लेकिन आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा, बाकी सब तो ठीक है, पर तुमने ये कहा क्यों? मतलब तुम ये गाना गाने की कोशिश क्यों कर रही थी? वेल, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि एक किस्सा इंटरनेट यानी सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर एक बंदे की मोहब्बत इतनी परवान चढ़ गई कि उसकी गर्लफ्रेंड ने चुंबन के निशान उसकी गाड़ी पर छोड़ दिया। मतलब किसेस के जो निशान थे वो उसकी गाड़ी पर छोड़ दिया, और कोई एक या दो या तीन या चार नहीं, बल्कि 3400 यानी कि 3400 लिपस्टिक मार्क उसकी गाड़ी पर छोड़ दिए और अपेरेंटली उनका कहना है कि वो एक वेस्टर्न ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे, लेकिन वेस्टर्न ट्रेंड इंडिया में चला नहीं। जी हाँ, ऑफ कोर्स ये कहानी जो है और ये किस्सा जो है वो इंडिया का है, जहां पर इस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ और इस व्यक्ति की गर्लफ्रेंड ने बेसिकली उसकी गाड़ी पे ऐसा किया और बहुत सारे किसेस मार्क्स जो हैं वो वहां पर उसकी गाड़ी पर छोड़ दिए। वो किसी चीज का बदला नहीं ले रही थी, वो प्यार जाहिर कर रही थी। आपको तो पता ही है, प्यार जब परवान चढ़ता है तो वो ऐसी ऐसी चीजें करवाता है जो कि आप नॉर्मल हालत में तो नहीं करोगे। जी हाँ। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा फनी था, क्योंकि ये देखकर सब लोग उसकी तरफ आकर्षित हुए, नहीं बंदे की तरफ नहीं बल्कि उसकी गाड़ी की तरफ, और ऐसे ही पुलिस भी उसकी गाड़ी की तरफ आकर्षित हो गई। इतनी आकर्षित हो गई कि उन्हें लगा कि ये क्या चल रहा है, मतलब ये क्या वाहियात चीज है, और उन्होंने चिपका दिया, लगा दिया फाइन, यानी कि पैसा लगने वाला था फिर, और वो लगा भी। जी हाँ। तो जुर्माना जो है उस बंदे पर डाल दिया गया और वो था 5,500 का, और अगर हम बात करें कि ये कितना था तो 55 या $60 के करीब जो है उसे ये फाइन पड़ा। जी हाँ। उसके बाद जो है पुलिस ने उसको फटकारा कि बाकी सब तो ठीक है पर ये किया क्यों तुमने, तो वो बंदा बोलता है कि सर हम तो किसी वेस्टर्न यू नो ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे, दैट्स इट। तो पुलिस वाले कहते हैं जल्दी से इसे साफ करो नहीं तो तुमको वेस्ट में पहुंचा देंगे, 5,500 रुपए पहले तुम यहां रखो, तुम्हारा जुर्माना है, और जल्दी से एकदम जल्दी जल्दी से इसको साफ करो नहीं तो तुमको वेस्ट में ही पहुंचा देंगे। जी हाँ। और बस फिर क्या था, बंदे ने वो फटाफट साफ कर दिया। बंदा भी सोच रहा होगा कि कहां हम वेस्टर्न ट्रेंड फॉलो करने चले थे, यहां ट्रेंड तो नहीं पर दंड मारने पड़ गए। जी हाँ। इसी के साथ यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ऐ तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तों बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान

0: वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नू सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
4: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
1: यार राहुल तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offense, traffic drug offense में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: Digicel, better together.
6: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
7: पाल इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट। सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम, ग्रैंड भजन नाइट। कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452-584-926। ग्रैंड भजन नाइट।
8: सारे हसी आहा नचे नचे, सारे जवां आहा नचे नचे।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, तो लव एंड वॉर की शूटिंग से पिक्चर्स जो है वो नहीं आ गई हैं। अगर आपको नहीं पता है लव एंड वॉर क्या है, तो लव एंड वॉर एक अपकमिंग मूवी है जिसे बना रहे हैं संजय लीला भंसाली। जी हाँ, दी संजय लीला भंसाली। और अगर आप इसकी स्टारकास्ट सुनोगे तो आप फिर और भी ज्यादा चक्कर खाने वाली सिचुएशन में पहुंच जाओगे, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त स्टारकास्ट है। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा ठीक है, मतलब अच्छी मूवी होगी, संजय लीला भंसाली बना रहे होंगे, पर चक्कर आने वाली क्या बात है, क्योंकि इसकी जो स्टारकास्ट है वो गजब की है। जी हाँ, सबसे पहले रणबीर कपूर है इसमें आलिया भट्ट जो कि रियल लाइफ हस्बैंड वाइफ है, वो आपको इसमें नजर आने वाले हैं। इसके साथ विकी कौशल भी आपको नजर आने वाले हैं। और ये वो वाली एरा का है जब 1950s और 60s का वक्त था। जी हाँ, सो उस वक्त की एरा का जो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने यहां पर लिया है, संजय लीला भंसाली से बना रहे हैं, इसकी शूटिंग जो है वो हो रही है, और वहां से पिक्चर्स जो है वो देखने को मिली सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों को, फैंस को, जो कि थोड़ी सी छोटी सी झलक देखने के लिए भी एकदम बेकरार बैठे हुए हैं। तो एकदम सूटेड बूटेड जो है वो लग रहे थे, और वैसा ही सूटेड बूटेड वो लग रहे थे जैसे पुराने जमाने में लोग हुआ करते थे। एक मस्टाश भी है उन्होंने, मतलब उन्होंने मूंछें भी रखी हुई हैं। आलिया भट्ट जो है वो लिटरली एक बहुत ही बड़ी विग के साथ एक क्लासी से गाउन में अपने आप को जो है वो शॉल में लिपटी हुई नजर आई, उनकी भी फोटो वहां पर क्लिक की गई। एक विकी कौशल भी है इसमें, लेकिन विकी कौशल की कोई पिक्चर अभी तक नहीं दिखी है, मतलब उनका लुक अभी तक पता नहीं चला है। बाकी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का लुक कहीं ना कहीं पता चल गया है। अब लव एंड वॉर है, तो इसमें कितना लव और कितनी वॉर होने वाली है, और जहां लव होता है वहां वॉर भी होती है कहीं ना कहीं। सो ये वाली सारी सिचुएशन जो है, लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि जल्द ही ये मूवी जो है वो थिएटर्स में आ सकती है। वेल ऑफकोर्स अभी मूवी बन रही है तो उसे बनने में टाइम लगेगा, फिर आफ्टर जो है पोस्ट प्रोडक्शन जो है वो काम होता है उसको करने में वक्त लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगले साल की स्टार्टिंग तक ये मूवी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, ऐसा हमें लग रहा है। इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि संजय लीला भंसाली जो है वो किसी भी चीज से समझौता नहीं करते हैं, वो हर एक चीज को बहुत ही जबरदस्त बनाते हैं। सो आप मुझे बताइए, क्या आप लव एंड वॉर के लिए एक्साइटेड हो? जी हाँ, इसी के साथ यहां पर एक और गाना आप सबके लिए।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Digicel, better together.
3: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
4: ताल इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट. सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी. फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट में. $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे. मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट. ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट. समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम. ग्रैंड भजन नाइट. कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452-584-926. ग्रैंड भजन नाइट.
5: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
6: Hi, this is Amitabh Bachchan.
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
8: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
9: Hi, this is Salman Khan.
10: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
11: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
12: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
13: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar. और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
14: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
15: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
16: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आज निविया के साथ. तो दोस्तों, आज है 26th of August और आज एक बहुत ही हैवी बजट की मूवी जो है वो रिलीज हो गई. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट टॉक्सिक. जी हाँ, सो टॉक्सिक जो है वो आज रिलीज हो गई है. 26th of August को बहुत पहले रिलीज होने की सोच रही थी. इनफैक्ट जब धुरंधर 2 आई थी तो धुरंधर 2 के साथ ये रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर इसे पोस्टपोन कर दिया गया, फिर से पोस्टपोन कर दिया गया और अब जाके जो है वो रिलीज हो रही है. आप खुद सोचिए, मार्च में रिलीज होने वाली थी, अगस्त में रिलीज हो रही है, कितना वक्त लग गया. वेल, वो इसलिए भी था क्योंकि जब ईरान और अमेरिका के बीच लड़ाई छिड़ गई तो उसके बाद मिडिल ईस्ट में जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस जो है वो हो गया था. एंड टॉक्सिक जो है वो चाह रही थी कि वो पूरी तरह से मिडिल ईस्ट में भी लगे, मतलब वो चाह रहे थे कि मिडिल ईस्ट में जो है उसकी रिलीज पर कोई भी असर ना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. और उन्होंने देख लिया कि वेट करने से कोई फायदा नहीं है, ये विवाद पता नहीं कब सुलझेगा. सो ऐसे में टॉक्सिक अब रिलीज हो रही है. ये है यश की मूवी. यश के लिए ये बहुत बड़ा साल है क्योंकि उनकी ये मूवी रिलीज हो रही है टॉक्सिक इसी के साथ. वो रामायण में रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, मतलब वही बहुत चर्चित मूवी जिसमें रणबीर कपूर राम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, साई पल्लवी सीता का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, और वो यानी कि यश रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने ट्रेलर देखा हो तो आप भी बोलोगे कि सिर्फ और सिर्फ यश ही अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर रहे हैं, अदरवाइज बाकी सब लोग तो ऐसे लग रहे हैं क्यों ही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मतलब साई पल्लवी सीता जी के कैरेक्टर में अच्छी लग रही है, बट वो उतनी अच्छी नहीं लग रही है जितनी लग सकती थी, बिकॉज साई पल्लवी जो है वो ब्यूटीफुल है, सिंपल है, बट वो उतनी ब्यूटीफुल नहीं है जितनी कि माँ सीता के कैरेक्टर के लिए चाहिए थी एक लेडी। जी हाँ, उसी के साथ रणबीर कपूर जो है वो अगेन अपनी आंखों के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो आंखें अग्रेसिव बना रहे हैं जबकि राम जी की आंखें बहुत ही सौम्य होती थी। जी हाँ, सो ऐसे में यश के लिए बड़ा साल है, अब टॉक्सिक हो गई है रिलीज, तो टॉक्सिक जो है आप देखोगे या नहीं देखोगे वो आप खुद डिसाइड करोगे। पहले आप इसका ट्रेलर जरूर देखिएगा, बिकॉज ट्रेलर से ही आप डिसाइड कर लोगे कि आप इस मूवी को देखने वाले हो। बात करते हैं इसकी स्टारकास्ट की, तो इसमें यश है, उनके अलावा कियारा आडवाणी है, तारा सुतारिया है, नयनतारा है, और भी बहुत सारी नायिकाएं हैं। सो ये मूवी जो है वो बहुत ही हार्ड हिटिंग है, डेफिनेटली आप अपने बच्चों के साथ तो नहीं देख सकते हो, उसके अलावा आप अपने पार्टनर या फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, बट वॉच द ट्रेलर फर्स्ट एंड देन लेट मी नो कि आप इसे देखने का प्लान कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बट या आज मूवी हो चुकी है रिलीज इतने लंबे इंतजार के बाद। और अगर आपको पता नहीं यश कौन है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपको पता होगा, लेकिन इन केस आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि यश है या द KGF स्टार। आपको आपके लिए एक और गाना मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब जरा चलते हैं खबरों की दुनिया की तरफ, रुख करते हैं सबसे पहले, शुरुआत करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, क्योंकि वो जिस विषय जैसा विषय बना हुआ है कुछ महीनों से, उससे ज्यादा ट्रेंडी विषय नहीं हो सकता। जी हाँ, सो हॉर्मुज स्ट्रेट से माइंस हटाने के लिए ईरान और ओमान के बीच बातचीत हुई है। आखिरकार क्या है वो बातचीत, आइए जरा जानते हैं। ओमान के विदेश मंत्री की ईरान यात्रा के बाद दोनों देशों ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक संयुक्त बयान जारी किया है। बयान के मुताबिक दोनों देश हॉर्मुज स्ट्रेट में एक अस्थायी साझा समुद्री गलियारा बनाने और इलाके से बारूदी सुरंगें हटाने के लिए एक संयुक्त परियोजना पर बातचीत कर रहे हैं। ईरान और ओमान का कहना है कि इन दोनों प्रस्तावों से आगे की कार्रवाई के लिए एक व्यवहारिक आधार तैयार हो सकता है। दोनों देशों का मुख्य लक्ष्य हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित समुद्री यातायात फिर से शुरू करना है और साथ ही अपनी संप्रभुता और अधिकारों को बनाए रखना है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इससे पहले कहा था कि दोनों देशों के बीच समझौता अंतिम चरण में है। पिछले करीब 3 सप्ताह से ईरानी अधिकारी अस्थायी समुद्री रास्ते को लेकर समझौते की संभावना की बात कर रहे हैं। संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष स्थायी समुद्री गलियारे हॉर्मुज स्ट्रेट के भविष्य के प्रबंधन, सूचना साझा करने, जहाजों की आवाजाही नियंत्रित करने और समुद्री सुरक्षा सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर तकनीकी बातचीत भी जारी रखेंगे। ईरान और ओमान इस मुद्दे पर खाड़ी के तट से जुड़े दूसरे देशों से भी बातचीत करने वाले हैं।

जी दोस्तों, यहाँ पर खबरों के बारे में बात हो रही है और अब जरा चलते हैं सीधा इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि वहां से बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। जी हाँ, बहुत ही दुखद खबर है। इनफैक्ट इस्लामाबाद के PIMS अस्पताल में लगी आग, 14 नवजात शिशुओं की मौत। जी हाँ, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से के सरकारी अस्पताल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के चिल्ड्रन वार्ड में आग लगने से 14 नवजात की मौत हो गई। अस्पताल के कार्यकारी निदेशक इमरान सिकंदर ने बच्चों की मौत की पुष्टि की है। इस्लामाबाद जिला प्रशासन के मुताबिक आग अस्पताल के MCH वार्ड की तीसरी मंजिल पर लगी। आग लगने की सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गए। BBC उर्दू के मुताबिक प्रशासन ने बताया कि आग पर तुरंत काबू पा लिया गया और बच्चों को ICU में ले जाया गया। घटना की जांच के लिए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर जनरल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। समिति आग लगने के कारणों की जांच करेगी। इससे पहले अस्पताल के प्रवक्ता डॉक्टर अनीजा जलील ने कहा था कि किसी बच्चे की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। उनके मुताबिक आग एयर कंडीशनिंग यूनिट में लगी थी और ऑक्सीजन कनेक्शन की वजह से तेजी से फैल गई। हादसे के समय वार्ड में 15 बच्चे भर्ती थे।

0: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.
1: Mera naam Dr. Kumar hai aur yahan kuch aisa hai jise janna acha hai. Ek naya National Lung Cancer Screening Program shuru hua hai. Ye saral hai, nishulk hai aur ye lakshanon ke samne aane se pehle hi lung cancer ka pata laga sakta hai. Yadi aapki dhoomrapan karne ki history rahi hai तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
0: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
0: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्सॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
5: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ एक और बहुत ही दिलचस्प चीज हुई। जी हाँ, अमेरिका के खुफिया एजेंसी CIA के चीफ अचानक पहुंचे रूस। जी हाँ, आप लोग बोलोगे हैं, एंड CIA इज नॉट अ गुड एजेंसी, आई एम टेलिंग यू। जी हाँ, सो अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख जॉन रेडक्लिफ मंगलवार को रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे। BBC के अमेरिकी साझेदार CBS के अनुसार रेडक्लिफ की यात्रा का कार्यक्रम पहले से घोषित नहीं था। अमेरिका और रूस ने अभी तक इस यात्रा की पुष्टि नहीं की है और ये भी नहीं बताया है कि वह किससे मिलने वाले हैं। अमेरिका और रूस के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच आमने सामने बातचीत काफी कम देखने को मिलता है। फ्लाइट की जानकारी से पता चला कि एक बड़ा अमेरिकी सैन्य विमान मंगलवार को लातविया के रास्ते अमेरिका के रूस पहुंचा। विमान मॉस्को हवाई अड्डे पर लैंड करने के बाद वापस लातविया चला गया। BBC ने इस मामले पर CIA, व्हाइट हाउस और पेंटागन से प्रतिक्रिया मांगी है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में विमान को मॉस्को के हवाई अड्डे के पास देखा गया। एक दूसरे वीडियो में मॉस्को में एक राजनयिक काफिला भी दिखाई दिया। रेडक्लिफ की यात्रा से पहले अमेरिका ने यूक्रेन को बताया था कि एक वरिष्ठ अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल मॉस्को जाएगा। एक वरिष्ठ यूक्रेनी अधिकारी के अनुसार अमेरिका ने बातचीत पूरी होने तक यूक्रेन से रूस पर हमला रोकने का अनुरोध भी किया है, लेकिन वो कितना रुकेगा वो तो वक्त ही बताएगा।

0: आगे।
1: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ कल ही की बात है, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी मैं और एक बहुत ही दिलचस्प चीज मेरे सामने आती है और क्यों मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ और क्यों करना चाहती हूँ वो आपको पता चल जाएगा जब आप पूरी बात सुनेंगे। जी हाँ, तो एक बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर है और वो अपनी बेटी के साथ बात कर रही थी। उनकी बेटी उनको कहती है कि मॉम, आपने मुझे कभी सिखाया नहीं कुक करना, तो आप मुझे कुक करना सिखाओ। तो उसकी मॉम कहती है कि क्यों, तुम्हें कुक करना क्यों सीखना है? तो वो कहती है कि यू नो व्हाट, आजकल जब भी मैं किसी लड़के से मिलूंगी तो आपको लड़के को या उनकी मॉम को इम्प्रेस करने के लिए यू शुड नो हाउ टू कुक, राइट? एंड शी इज नॉट अ इंडियन इन्फ्लुएंसर बाय द वे, शी इज अ अमेरिकन इन्फ्लुएंसर एंड शी इज इंडियन बट शी वर्क्स इन अमेरिका। सो द थिंग इज कि वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे एंड इट वॉज जस्ट अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ मदर एंड डॉटर। और ये चीज कहीं ना कहीं हमने सबने अपनी जिंदगी में एक बार तो सुनी होगी, जब हमारे पेरेंट्स ने कहा होगा कि यू नो वॉट, यू शुड लर्न हाउ टू कुक, खाना बनाना सीखो, खाना बनाना सीखो। बट जो ये इन्फ्लुएंसर है जिनके बारे में मैं बात कर रही हूं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, वो एक अलग ही एडवाइस अपनी बेटी को देती है। नाउ आई डोंट अग्री विद हर फुली, मतलब पूरी तरह से, बट मैं ये कहूंगी कि मतलब कॉन्टेक्स्ट तो है डेफिनेटली, मतलब एक पर्सपेक्टिव तो है यहाँ पे। जी हाँ, तो वो कहती है कि यू डोंट नीड टू नो हाउ टू कुक, यू जस्ट कैन लिटरली वॉच अ वीडियो ऑफ कुकिंग एंड यू कैन लिटरली लर्न फ्रॉम दैट। आई डोंट हैव टू टीच यू हाउ टू कुक, यू जस्ट नीड टू मेक मनी। सो द एडवाइस वॉज, जो कि उस इन्फ्लुएंसर ने अपनी बेटी को दी, वो ये थी कि लर्न हाउ टू मेक मनी, बाय फूड, पुट इट इन अ प्लेट एंड प्रिटेंड यू कुक्ड इट। जी हाँ, दैट्स व्हाट शी सेड। एंड किसी मम्मी ने किसी बेटी को आज तक ऐसी सलाह नहीं दी होगी, बट यार शी इज फनी एंड शी इज वेरी वेरी ह्यूमरस, आई वुड से। अब बात तो सही है यार, मतलब अगर हम पैसा कमाना सीखेंगे तो हम खाना खरीद सकते हैं, और खाना खरीद सकते हैं तो अपनी प्लेट पे रख के उसे ऐसा प्रिटेंड कर सकते हैं कि ये तो हमने ही बनाया है। सो यार अगेन, जैसे मैंने कहा कि मैं पूरी तरह से इससे अग्री नहीं करती हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि बात में दम तो है। ऑल्दो हमें आना चाहिए कुक करना, बिकॉज कुकिंग इज अ लाइफ स्किल एंड वी ऑल शुड नो हाउ टू कुक। जी हाँ, बट द थिंग इज कि एक मॉम अपनी बेटी को कुकिंग करना सीखने के बजाय ये कह रही है कि यू नो व्हाट, जस्ट मेक मनी बेटा, एंड यू नो व्हाट, बाय फूड, पुट इट ऑन द प्लेट एंड जस्ट प्रिटेंड यू कुक्ड इट, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू डू, डोंट यू डोंट हैव टू लर्न हाउ टू कुक। जी हाँ, मतलब क्या बात है। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business, built on trust.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
6: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance. Owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are. Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
7: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
8: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
9: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशी निविया के साथ। दोस्तों अब वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का, तो जल्दी से आ जाइए, सवार हो जाइए हमारे साथ इस सफर में, क्योंकि ये सफर आपको लेकर जाने वाला है उस एरा में जो कि खूबसूरत और प्योरिटी से भरी है। जी हाँ, वो एरा जिसमें रफी साहब जैसे सिंगर, किशोर दास जैसे सिंगर्स, दिलीप साहब जैसे एक्टर्स और शंकर जयकिशन से म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे। जी हाँ, उन्हीं की एरा में हम आपको लेकर जाने वाले हैं। सो सबसे पहले जो गाना मैं प्ले करने वाली हूं वो एक बड़ा ही अच्छा गाना है, और खूबसूरत गाना है, लेकिन उसके बिना आज भी कोई शादी कंप्लीट नहीं होती है। और ये गाना है कजरा मोहब्बत वाला। जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना ना सच में लेजेंडरी है। मतलब आज भी आप इसे सुनोगे तो आपको ऐसा लगता है क्या बात है भाई, क्या बात है। फ्रॉम कॉम्पोजिशन टू यू नो सिंगिंग टू एवरीथिंग, दिस सॉन्ग इज अ मास्टरपीस।

लेजेंडरी गाना है मेरे दिल में आज क्या है। जी हाँ, मैं नहीं गाऊंगी, डोंट वरी, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट फॉर यू। बट द थिंग इज, ये गाना जब बना तो इसके पीछे एक कहानी जो है वो बड़ी फनी है, और इसे अमित कुमार ने सुनाया है। जी हाँ, अमित कुमार की जुबानी ये बाहर आई है, क्योंकि अमित कुमार जो कि किशोरदा के बेटे हैं, उनको ये किस्सा जो है वो किशोरदा ने खुद सुनाया था, और इनफैक्ट उनको ये देखने को भी मिला था। सो हुआ कुछ ऐसे कि ये गाना जब बन रहा था तो उस वक्त इसे रिकॉर्ड कर दिया जाता है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इसे बनाते हैं इसकी धुन, और यहाँ पर किशोरदा इसे गा देते हैं। अब गाना बहुत ही खूबसूरत है, किशोरदा ने गा दिया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बना दिया, इससे ज्यादा और क्या ही खूबसूरत हो सकता है, राइट। बट जब यहाँ पर वो इस गाने को सुनते हैं, यानी कि किशोरदा जब बाद में इस गाने को सुनते हैं, तो उनको ऐसा लगता है, तू दिल में ये छुपा दे, छुपा दे। जी हाँ, ये वाला जो पार्ट आता है तो उसमें किशोरदा को लगता है कि ये पादे पादे क्या बोल रहा है भाई, ये क्या चल रहा है। वो फटाफट से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को कॉल करते हैं कि ए प्यारेलाल, ये तो गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, ये अच्छा साउंड नहीं कर रहा, ये छुपा ले होना चाहिए, छुपा ले, मैं तुझे कहीं छुपा लूं, ऐसा होना चाहिए, बट ये छुपा दे बोल दिया गया है और ये पादे पादे साउंड कर रहा है। अब यहां पर वो कहते हैं चलो ठीक है, ऐसा करते हैं इसकी फिर से रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर से करते हैं। लेकिन तब तक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और किशोरदा जब तक प्रोड्यूसर से बात करते हैं, डायरेक्टर से बात करते हैं, तो डायरेक्टर उन्हें कहते हैं कि अरे भैया तुम लेट हो गए हो, अब ये पादे पादे ही जाएगा आगे, क्योंकि राजेश खन्ना वहां पे पहाड़ों पे इस गाने को पिक्चराइज कर रहा है, अब ये हो गया है गाना और इसकी पिक्चराइजेशन शुरू हो गई है। सो अब ये गाना वैसा ही रहेगा जैसा कि आपने देखा है। तो कभी भी आप ये देखिएगा जब आप इस गाने को रियल में सुनेंगे, जो इसकी रियल रिकॉर्डिंग है, तो उसमें वो छुपा दे, लेकिन किशोरदा ने जहां भी इसे लाइव गाया है वहां उन्होंने इसे छुपा दे नहीं, छुपा ले मैं दिल तुम्हें छुपा लूं, उन्होंने छुपा ले गाया है। जी हाँ, अब बात यह है कि मतलब गाना जो है रिकॉर्ड हो गया, तब कुछ गड़बड़ नहीं लगी, सब कुछ हो गया, लेकिन बाद में जब उसे फिर से सुना गया तो फिर गड़बड़ लगी, और वो गड़बड़ भी बहुत ही फनी। मतलब किशोरदा बड़े ही अच्छे से बोलते लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को, क्या चल रहा है ये पादे पादे पादे, गलत साउंड कर रहा है ये। लेकिन तब तक राजेश खन्ना उसे पिक्चराइज कर चुके थे। जी हाँ, वहां भी पहाड़ों पर। इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, जब भी हम रफी साहब, किशोर दा जैसे बड़े बड़े सिंगर्स के बारे में बात करते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट के बारे में बात करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि उनके केस में तो कभी भी नहीं हुआ होगा कि किसी ने उनके काम में खामियां निकाली होंगी। लेकिन ऐसा नहीं था, बहुत बार ऐसा होता था। और उन्हीं चीजों को पूरा करते हुए, ओवरकम करते हुए वो उस पड़ाव पर पहुंचे जहां पर उनके काम में कोई भी खामी नहीं निकाल पाया। जी हाँ, 1977 की बात है। एक पिक्चर के लिए एक गाने की जरूरत थी जिसका म्यूजिक जो है वो खयाम बना रहे थे। और अगर आपको नहीं पता है कि खयाम कौन है, तो वो उसी गाने को बनाया है उन्होंने, उस गाने की कॉम्पोजिशन उन्होंने की है जो बहुत ही खूबसूरत है, ए दिले नादा। जी हाँ, वो जो धुन है वो खयाम की दी हुई है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर वो रहे होंगे। बस फिर क्या था, इसकी धुन जो है उन्होंने बनाई। गाना रिकॉर्ड करने के लिए रफी साहब को बुलाया गया, रफी साहब ने इस गाने को रिकॉर्ड भी कर दिया और ऐसा लग रहा था कि हाँ, सब कुछ एकदम बढ़िया हो गया और डन हो गया। लेकिन जब रफी साहब अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर आए, तो खयाम उन्हें कहते हैं कि रफी साहब, ये गाना ना फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो रफी साहब कहते हैं, ठीक है, बट क्या आपको क्या कमी लगी? कहते, रफी साहब, आपने उस गाने को ना वैसे रिकॉर्ड किया है जैसे आप सुबह की गाड़ी पकड़ने वाले हो। वैसे हमें नहीं चाहिए ये गाना, हमें गाना ये कुछ दूसरे लहजे में चाहिए। तो रफी साहब सामने कहते हैं कि खयाम साहब, आप ना बहुत बारीकी में चले जाते हैं, इतनी बारीकी में कभी कभी नहीं भी जाना चाहिए। तो खयाम साहब कहते हैं सामने से कि नहीं नहीं, ये गाना तो वैसे ही बनेगा तभी मजेदार लगेगा, नहीं तो उसमें वो बात नहीं आएगी। और रफी साहब हमेशा से म्यूजिक डायरेक्टर्स की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। तो रफी साहब फिर से स्टूडियो में गए और उन्होंने कहा कि अब जैसा आप चाहते हैं मैं वैसे ही गाऊंगा, आप मुझे समझाइए। फिर क्या था, रफी साहब ने वो गाना गाया और बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाया। वेल, अभी जो मैं गाना आपको सुनाने वाली हूँ वो वाला गाना नहीं है, लेकिन ये भी रफी साहब का गाना है और इस गीत को फरमाइश किया गया है हमारे बहुत ही खास लिसनर विशाल जी की तरफ से। गाने का नाम है जो उनकी तमन्ना है। जी हाँ, रफी साहब का गाया हुआ ये गाना इंतकाम मूवी का है, 1969 में आई थी। थैंक यू सो मच विशाल जी, हमेशा की तरह जबरदस्त और खूबसूरत फरमाइशों के लिए। और ये रहा आपका गाना बिना देर किए।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। जा रहे हैं हम, वापस आएंगे कल। लेकिन आपको क्या करना है, रिलैक्स करना है, पूरे दिन की जो जद्दोजहद है उसको पीछे छोड़ देना है और मजे से अपने खाने को एंजॉय करना है। और खाने को एंजॉय करने के बाद कुछ अच्छा सा पढ़ना है, कुछ अच्छा सा सुनना है, या कोई अच्छा सा शो देखना है, या फिर अपने घर वालों के साथ गपशप मारनी है, क्योंकि वो भी बहुत ही मजेदार चीज होती है। और ऐसे ही अपने दिन की जो है दिन को खत्म कीजिएगा, ये चीजें अच्छी होती हैं। दैट्स अबाउट इट। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
11: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए. डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक. जस्ट सेंड $30 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फिजी एंड बी इन द ड्रॉ. और जानकारी के लिए विजिट करें digicelpacific.com.
12: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
13: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
14: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
13: अच्छा, वो क्या?
14: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन और वो भी फ्री में.
13: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
14: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
15: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
16: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं.
15: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
16: बिल्कुल. ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए. ओमजोर्ग, स्पेल्ड

0: SORG वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो ओम्सऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, ओम्सऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

नमस्कार, आप सुन रही हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन पुलिस का ड्रिंक एंड ड्राइव पर बड़ा क्रैकडाउन। ब्रिस्बेन पुलिस ने पिछले एक हफ्ते में सड़क सुरक्षा अभियान चलाकर 57 चालकों को शराब या ड्रग्स के प्रभाव में गाड़ी चलाते पकड़ा है। पुलिस ने करीब 9,500 से अधिक रैंडम टेस्ट किए और 1,300 से ज्यादा चलान काटे हैं। वहीं क्वींसलैंड सरकार का फिल्म इंडस्ट्री को $50 मिलियन का बूस्ट। ब्रिस्बेन और क्वींसलैंड के लोकल स्क्रीन और फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अगले 2 सालों में $50 मिलियन का फंड देने का ऐलान किया है। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्मार्ट बनाने पर काम जारी। ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल शहर की प्रमुख बस और ट्रेन लाइनों को और बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। आने वाले हफ्तों में कुछ नए रूट्स पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का प्लान है ताकि यात्रियों को आसानी हो सके। वहीं लोकल पार्क्स और कम्युनिटी गार्डन्स का नवीनीकरण। शहर के स्थानीय पार्कों और सार्वजनिक स्थानों को हरा भरा और साफ सुथरा बनाने के लिए ब्रिस्बेन काउंसिल ने नया सफाई अभियान शुरू किया है। इसमें लोकल रेजिडेंट्स भी हिस्सा ले रहे हैं। इसी के साथ स्कैम अवेयरनेस वीक, लोगों को अलर्ट रखने की सलाह। ब्रिस्बेन पुलिस और कम्युनिटी ग्रुप्स ने ऑनलाइन और फोन स्कैम से बचने के लिए लोगों को जागरूक करना शुरू किया है। किसी भी अनजान लिंक या कॉल पर बैंकिंग डिटेल्स शेयर ना करने की हिदायत दी गई है। वहीं वीकेंड वेदर और बीच सेफ्टी गाइडलाइन। गोल्ड कोस्ट और ब्रिस्बेन के तटीय इलाकों में इस वीकेंड खूबसूरत मौसम रहने की उम्मीद है। हालांकि लाइफगार्ड्स ने समंदर में उतरने वाले तैराकों को सिर्फ रेड और येलो फ्लैग्स के बीच ही रहने की सलाह दी है। इसके साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले यूपी के बंदायू में विवाद के बाद तनाव। उत्तर प्रदेश के बंदायू जिले के सीकरी गांव में एक प्रतिमा स्थापित करने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। वहीं तेलंगाना में बड़ा सड़क हादसा। तेलंगाना के सूर्यपेट जिले में आज तड़के एक दर्दनाक हादसा सामने आया। हैदराबाद से विजयवाड़ा जा रही एक प्राइवेट बस की ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और कई यात्री घायल हो गए। वहीं अमेरिका की वीजा पॉलिसी में बड़ा बदलाव। अमेरिका जाने का प्लान बना रहे भारतीयों के लिए अहम खबर है। अमेरिकी प्रशासन ने अपने सभी दूतावासों में वीजा अपॉइंटमेंट्स पर अस्थाई रोक लगा दी है। वहीं यूएन रिपोर्ट पर भारत का कड़ा जवाब। भारत ने संयुक्त राष्ट्र यूएन की नस्ली भेदभाव से जुड़ी एक हालिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने साफ किया है कि रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े और टिप्पणियां पूरी तरह से मनगढ़ंत और राजनीति से प्रेरित हैं। वहीं ब्रिक्स बैठक में ह्यूमैनिटी फर्स्ट पर जोर। ब्रिक्स संगठन की अध्यक्षता कर रहे भारत ने एक बार फिर दुनिया को इंसानियत का संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स चेयरमैनशिप का मुख्य मकसद ह्यूमैनिटी फर्स्ट यानी इंसानियत को सबसे ऊपर रखना है। इसी के साथ मौसम विभाग का अलर्ट जारी। देश के कई हिस्सों में हो रही भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने नए अलर्ट जारी किए हैं। खासकर पहाड़ी इलाकों और तटीय क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों को सतर्क रहने और ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है। इसके साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले कनाडा का अमेरिका पर बड़ा आर्थिक कदम। कनाडा और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर तनातनी बढ़ गई है। कनाडा ने अमेरिकी सामानों पर करीब 50% तक का काउंटर टैरिफ लगाने का फैसला किया है। वहीं H-1B वीजा की फीस में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने H-1B वीजा के लिए एक नया प्रस्ताव रखा है। इसके तहत याचिका दायर करने पर $1,00,000 से ज्यादा की अतिरिक्त फीस चुकाने का नियम लाया जा सकता है। वहीं न्यूजीलैंड में बच्चों के सोशल मीडिया पर रोक की तैयारी। न्यूजीलैंड सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर बैन लगाने वाला बिल संसद में पेश करने जा रही है।
वहीं इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स को सुरक्षित रखने की अपील संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने समुद्री रास्तों पर कमर्शियल जहाजों पर हो रहे हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। वहीं ईरान पर नए प्रतिबंधों की हलचल, अमेरिका की ओर से नए आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने के संकेतों के बाद ईरान ने अपनी रणनीति स्पष्ट की है। ईरान की विदेश मंत्रालय का कहना है कि वे किसी भी तरह के आर्थिक दबाव का कड़ा जवाब देने के लिए तैयार हैं। वहीं मेडिकल डिवाइसेस की सिक्योरिटी पर चर्चा, अमेरिका में इस बात पर बहस तेज हो गई है कि सरकारी फंड का इस्तेमाल चीनी मेडिकल डिवाइसेस खरीदने में ना किया जाए। इसी के साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले एशियन गेम्स में खिलाड़ियों की संख्या पर चर्चा, जापान के नागोया में होने वाले आगामी एशियन गेम्स के लिए खिलाड़ियों और अधिकारियों की संख्या 17,000 तक पहुंच गई है। वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट शेड्यूल में व्यवस्थता, जी हां, दुनिया

0: वहीं यूरोपीय फुटबॉल लीग्स का धमाकेदार दौर। यूरोप में प्रमुख फुटबॉल क्लब्स के बीच खेले जा रहे ट्रांसफर विंडो और डोमेस्टिक मैचों में जबरदस्त रोमांच देखा जा रहा है। युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन और नए साइनिंग फैंस का ध्यान खींच रहे हैं। वहीं टेनिस ग्रैंड स्लैम से पहले खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत। प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट से पहले दुनिया के टॉप टेनिस खिलाड़ी लगातार वार्म अप मैचों में हिस्सा ले रहे हैं। चोट से वापसी कर रहे स्टार खिलाड़ियों पर फैंस की खास नजर टिकी हुई है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वान।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखें। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
4: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
5: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
4: ऐसा क्या खास है वहाँ?
5: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी।

0: From Fijian India, Brisbane ke best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. Aur fresh local produce bhi rakhte hain. Saath hi kitchenware and disposable plates ki large range kisi bhi function ke liye.
1: Are wah, intelligent ho gayi ho.
0: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98

क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बन द्वारा अधिकार

0: आई एम योर ओनली एडम।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट। सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम, ग्रैंड भजन नाइट। कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452 584 926। ग्रैंड भजन नाइट।

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो।

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स एंड आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। जस्ट सेंड $30 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फीजी एंड बी इन द ड्रॉ। और जानकारी के लिए विजिट करें DigiCellPacific.com।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

वेलकम आदाब जी, सत श्रीकाल जी। आज तुम बने हुए हो जी थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101.1 FM ते जीआर छे संदेश औलख दे नाल सुबन चुके हो। ते सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत ही सोहणा जिहा वेला हो चुक्या जी, ते इन्हां गल्लां नूं असीं लगाउणा पंजाबी गीतां दा तड़का। तुसीं की गाणा है, तुसीं जुड़ना है साडे नाल, तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बसवाणी 101.1 FM साडा फेसबुक पेज है जी, ते bisswani@bisswani.com साडी ईमेल आईडी है। जरिया जेड़ा तुहानू चंगा लगता है तुसीं ओह अपना सकते हो, पर साडे नाल देखो गल्लां बातां जरूर करनियां ने, तां फटाफट दे नाल तुसीं अपना फोन चुको ते साडे नाल जुड़ना शुरू कर दो। ते मैं तां तुहाडे नाल जुड़ी ही रहना, गल्लां बातां इसे तरीके दे नाल असीं करदे ही रहना, बस तुसीं जुड़ना बिल्कुल भी ना भुलो। तुसीं जुड़ो, फोन चुको, ते मैं हुणे वापस आउंदी हां। उहनां समां इहनां सोहणे सोहणे गीतां नूं तुसीं इंजॉय करो।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: Queensland vich har saal jangalan vich agg lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di agg to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो।

बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपनी चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 FM ते जीआर चे संदेश शौलक दे नाल तुसीं बने होए। देखो मूवीज दी हमेशा गल करदे हुंदे आ क्योंकि मैं चाहुंदी हुंदी आ कि थोड़ा जिहड़ा हर टाइम हैगा ना, बेशक वह वीकेंड होवे ते बेशक वह वीकडेज होण, जदों भी तुसीं थोड़ा मूड ऑफ होवे, कुछ स्पैशल करना होवे, तां कुछ देखण लई कंटेंट लभ रहे होवे, तां मैं तुहाडी हैल्प करां, तां अज मैं उही काम करूंगी। देखो जेकर तुहानूं वी शार्क वर्गियां सस्पेंस थ्रिलर पसंद आउंदियां हैगियां ने ना, तां अज मैं तुहाडे लई लैके आई हां अजिहियां ही शार्क मूवीज दी लिस्ट, जिन्हां तुसीं घरे बैठे ओटीटी ते देख सकते हो, इंजॉय कर सकते हैं उन्हां नूं, ते जिस विच सस्पेंस थ्रिलर दे नाल नाल मिस्ट्री भी बहुत वधिया है की है। सच्चियां घटनावां ते आधारित भी हैगियां ने, कुछ कु सारियां ने, कुछ कु ते दसां तुहानूं इन्हां बारे दसदी आं, पर पहला सुनो एक गीत।

0: चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

जी जी अनु जी वेलकम बैक, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101.1 FM ते जी आर चेस संदेश अलग दिन से बने हुए हो। इस लिस्ट दे विच यानी कि शार्क मूवीज दी लिस्ट दे विच सब तो पहला नाम जेड़ी फिल्म दा आंदा हैगा है वो है जी थ्रैश। थ्रैश हैगी है जेड़ी ए फिल्म ना समंदर किनारे बसे एक अजिहे शहर की कहानी है जिथे भयंकर तूफान आंदा हैगा है जिस बारे तुसी सोच भी नहीं सकते। हड़ आ जाता हैगा, हड़ दे पानी दे नाल शहर दे अंदर खूंखार शार्क भी वड़ जांदियां हैगियां ने। इस तो बाद शुरू हुंदा है असल कहानी, अगल असल रोमांच की कहानी। ते जिवें तुहानू हुणी सारा कुछ दसता तो तुहाडा सस्पेंस हैगा जिहड़ा बिल्कुल खत्म हो जाऊगा। इस लई तुसी थ्रैश जरूर देखो। हुण तुसी सोच रहे होंगे कि इहनूं असीं किथे देखिए, तां इस मूवी नूं तुसी यानी कि थ्रैश नूं तुसी देख सकते हैगे नैटफ्लिक्स ते।

0: beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

जी जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो दुस्वानी वन सर वन एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला जिहड़ा हैगा नाम इस लिस्ट विच ओ हैगा है जी अंडर पैरिस। अंडर पैरिस हैगी है जिहड़ी ए 2004 दी फिल्म हैगी है, ए भी नैटफ्लिक्स दी ही हैगी है। 2004 विच आई सी नैटफ्लिक्स से। इस फिल्म ने धूम ही मचा दी थी सौंदे सार, क्योंकि कहानी कहानी बहुत खास है। कहानी की गल करिए पैरिस दी सी नदी विच जद एक विशाल शाक नजर आती है तो पूरे शहर विच हड़कंप मच जाता है। किवें कई बार इरादे सही होने के बाद भी वैज्ञानिक राजनीति की वजह न हार जाते ने, ये गल ना इस फिल्म दे विच बाखूबी दिखाई गई है। तो तुसी इसनों एक बार बिंज वॉच जरूर करो क्योंकि बहुत ज्यादा सोहनी फिल्म है।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings.
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में. फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद. कॉल नाउ ऑन 04111270035. रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर. For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है. मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है. स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं. प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को. फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660.

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी संदेश अलग दिनाल बने हुए। अगला नाम केड़ा है इस लिस्ट दे विच? ता अगला नाम है जी द रीफ। आई सी 2010 दे विच ता बहुत शानदार फिल्म है। कहानी मैं तुहानू पहला दस दिनी आ। ता कहानी दी जे गल करिए ना तो आस्ट्रेलिया दे समुंदर विच एक किश्ती हैगी जिहड़ी पलटन तो बाद ना दोस्तां दा एक ग्रुप गहरे पानी विच फस जांदा है। उन्हां नू किनारे तक पहुंचण दे लई तैरना पैंदा है पर एक विशाल शार्क उन्हां दा पिछा शुरू कर दिंदी है। ते इह फिल्म इसे दे इर्द गिर्द घूमदी है किवें शार्क तो बचदे ने, कौन बचता है कौन नहीं बचता, इह सब कुछ तुहानू इस फिल्म दे विच देखण नू मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। इस नूं तुसीं नैटफ्लिक्स ते नहीं देख सकते, बिल्कुल भी नहीं देख सकते, इसलिए तुहानू देखना पैणा है एमाजॉन प्राइम वीडियो। You're so cute.

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804।

जी आनू एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101.1 ते जी आज संदेश अलग दिनाल तुसी बने हुए। अगला नाम है जी ओपन वाटर 2003 दे विच आई सी। ए सच्ची घटना ते आधारित फिल्म हैगी है। एक कहा जाता हैगा जे मैं तुहानू स्टार्टिंग दे विच कहा सी ना कि कुछ कु फिल्मां सच्चियां घटनावां ते आधारित है ते उहनां दे विचों एक है। तां हुण जे मैं कहानी दी गल करां ना तां कहानी एक कपल दी हैगी है। एक कपल ना स्कूबा डाइविंग दे दौरान गलती नाल समुंदर विच इकल्ला छुट जांदा है। इस तों बाद उसदे चारे पासे शाक जमा होण लगदियां ने ते इसे ते अल तां कहानी फिर शुरू हुंदी है कि उह शाक तों किवें बचदे हैगे ने क्योंकि शाक तो बच पाउणा ही तां सब तो ज्यादा खतरनाक सीन है। किवें बचदे ने किवें नहीं बचदे इस बारे जानना हुंदा हैगा ते इस नूं तुसीं कित्थे देखणा हैगा है। इहनूं तुसीं देखणा हैगा है जी ओटीटी प्लेटफॉर्म एमाजॉन प्राइम वीडियो ते उत्थे इंजॉय कर सकते हो।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वंसर वाले हम ते चार चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। इस लिस्ट दे विच अगला नाम केड़ा है गया था, अगला नाम है गया जी द शैलो। 2016 दे विच आई सी फिल्म, बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा सोहनी है, इंटरेस्टिंग भी है। तो इसकी कहानी मैं तुम दस दिनी है। कहानी विच ना एक कुड़ी तट तो कुछ ही दूरी ते बनी एक चट्टान ते फस जाती है। उसके होर किनारे दे विचकार एक विशाल शाक पैरा देरी हुंदी है। एक छोटी जी दूरी नू पार करना एक रोमांच नाल परी कहानी नू जन्म दिंदा हैगा है। ते यही तो इसकी कहानी है कि वह कुड़ी किवें पार करूगी, क्योंकि उत्थे तां शार्क है की है। यह कहानी जो तुसीं देखनी है कि किवें की कुछ होगा, तो इस दे लई तुहानू नैटफलिक्स ते जरूर जाना पैना। यह हॉलीवुड फिल्म हैगी है, ते प्राइम वीडियो ते नैटफलिक्स दोनों ते तुसीं इस नू इंजॉय कर सकते हो।

हाँ जी, तो देखो वेला तो हो चुक्या है थोड़े तो इजाजत लैण दा, पर जांदे जांदे मैं सोचा कि क्यों ना थानू एक फिल्म बारे होर दस देवा, है ना। तो वो फिल्म हैगी है जॉस। मनिया जांदा है कि स्टीवन स्पीलबर्ग दी इस शार्क थ्रिलर फिल्म तो शार्क वालियां फिल्मां दी शुरुआत हुई सी। कहानी दी गल करिए तां एक पुलिस चीफ, एक मरीन बायोलॉजिस्ट अते एक मछुआरा मिलके एक आदमखोर शार्क दा शिकार करन निकलदे ने। कहानी रोमांच नाल भरपूर है ते इस नूं तुसीं जियो सिनेमा ते नेटफ्लिक्स ते देख सकते हो। ते तुसीं इन्हां फिल्मां नूं जरूर देखियो ते मैनूं रिव्यू दस्सियो, ते बाकी जिन्हां ने देख ली हुई है ते उह वी दस्सियो कि किस तरह दा दी है इसकी कहानी, किन्नी कु ज्यादा होनी है की है। तां चलो फिर तुसी जुड़दे रहो साडे नाल। रेडियो ब्रिसवानी 107.1 FM साडा फेसबुक पेज है, जिथे ब्रिसवानी@ब्रिसवानी.com साडी ईमेल आईडी है। जरिए जेड़ा भी अपनाना है अपना लो, पर साडे नाल पता जरूर करो। ते मैं तां इही कहना है जी कि कल फिर करते मुलाकात। रखो अपना ख्याल। सत श्री अकाल।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है तां जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। इह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तों बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
2: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
5: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
2: Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
3: Yaar, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की इंट्रीकेसीज को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटन यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
6: Digicel, better together. Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
7: पाल इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट। सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम। ग्रैंड भजन नाइट। कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452584926। ग्रैंड भजन नाइट।

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: To everyone tuning into Radio Biswani, this is Shah Rukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan, and you are listening to Radio Biswani.

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी

या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाच के मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

जान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

पॉल इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट। सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम, ग्रैंड भजन नाइट। कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452 584 926। ग्रैंड भजन नाइट।

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी पे।
7: To everyone tuning into Radio Biswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan, and you're listening to Radio Biswani.
9: Sir, on stage, 5 minutes.
10: Okay. Tumhari, main ja. लगता रूम में रह गया।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

जीवन का सत्य अमिट है, और जीवन का सत्य ये है कि जब तक आपकी सांसें हैं तभी तक आपकी पहचान है। एक बार आपकी सांसें मिट गईं तो ये पहचान भी मिट जाएगी। तो चलिए, आज एक नई सुबह जब हमें मिली है तो इस सांसों को देने वाले को ये वक्त है शुक्रिया कहने का, धन्यवाद देने का, और उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस जीसस, उस वाहे गुरु का ध्यान करने का। आइए इसी ध्यान में डूबते हैं आज एक बार फिर से जीवन आधार के साथ। बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं ये गीत। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

जीवन आधार आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सहनशीलता मनुष्य का गुण है। हम सब में सहनशीलता की शक्ति होना बहुत जरूरी है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को खोकर अगर आप जीवन में कुछ भी सहन करते हैं श्रोताओं, तो ये आपके लिए पीड़ादायक है और ये आपके जीवन का अपमान है। इसलिए सहनशीलता की शक्ति का प्रयोग तभी तक करें जब तक आपके आत्मसम्मान को ठेस ना लगे। अगर आपके सहन शक्ति का प्रयोग करने से या सहनशील रहने से आपका आत्मसम्मान आपका नहीं रहता है, तो फिर ये आपके आत्मसम्मान का अपमान है, आपके जीवन का अपमान है और वहां पर आवाज उठाना जरूरी हो जाता है। आइए भगवान श्री कृष्ण की इसी बात के साथ आगे बढ़ते हैं, एक और गीत को सुनते हैं। सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन आधार।

सुबह के अमूल्य विचार जीवन आधार आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। अपने इन विचारों के साथ साथ कुछ ऐसे गीतों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं जो हमारे जीवन को भी शुद्ध कर रहे हैं और जीवन का सही पर्याय हमें बता रहे हैं। एक ऐसे ही गीत के साथ अभी बढ़ूंगी आगे। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

एकांत, एकांत हम सबके जीवन में अति आवश्यक है श्रोताओं, लेकिन इसी एकांत से हम आज भाग रहे हैं। हम आज भीड़ ढूंढ रहे हैं, फिर चाहे वो आपके फोन के जरिए हो या लोगों के जरिए। आप हमेशा भीड़ में रहना चाहते हैं, लोगों का साथ चाहते हैं, और इसीलिए आप सोशल मीडिया से कनेक्ट करते हैं। लेकिन इंसान ही है जो आपको मनुष्य बनाता है, वरना भीड़ में आप भीड़ बन जाते हैं। जिस ओर सब चलते हैं उसी ओर आप चलते हैं। आपके मन की एकाग्रता आपको सही रास्ते पर लेकर जाती है, इसलिए कुछ देर, कम से कम आज के व्यस्त जीवन में कुछ देर एकांत में गुजारने अत्यंत आवश्यक है, ताकि आप खुद को समझ सकें, अपने सपनों को, अपने आप को समझ सकें। इसी एकांतवास के नाम ये अगला गीत सुनते रहिए सताक्षी के साथ, जीवन आधार।

जीवन के आधार को कुछ अमूल्य विचारों के जरिए हम आज एक बार फिर से जानने की कोशिश कर रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM पर। और श्रोताओं, अभी हम आगे बढ़ेंगे एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

आप चाहे किसी भी धर्म में माने, लेकिन जीवन का एक सत्य आप किसी भी धर्म को मानकर नहीं बदल सकते कि अपना जीवन अगर कोई बदल सकता है, आपका जीवन अगर कोई बदल सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपके अलावा आपका जीवन और कोई भी नहीं बदल सकता, और उस बदलाव में ना तो ईश्वर इंटरफेयर करता है, ना खुदा, ना जीजस। सबका एक ही बात तो है कहना कि अगर आप कर्म अच्छे करेंगे तो आपका जीवन अपने आप खूबसूरत हो जाएगा। इसीलिए अपने कर्म हमेशा अच्छे रखिए ताकि जीवन की खुशियां हमेशा बरकरार रहें। आइए इसी बात पर एक और गीत को सुनते हैं। सुनते रहिए जीवन आधार, और सताक्षी के साथ अच्छे कर्मों की ओर आइए बढ़ते हुए ये गीत सुनते हैं।

सुबह के कुछ ऐसे विचार जो आपका जीवन बदल दें, उन्हीं विचारों को आज आप एक बार फिर से सुन रहे हैं रेडियो प्रसानी 1701 एम पर। और इस सफर में आपकी हम सफर सताक्षी आज एक बार फिर से आपके साथ है। आगे बढ़ूंगी एक और गीत के साथ, सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन आधार।

जीवन के कठोर सत्य की। जीवन किसी से बंधा नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति से नहीं, भले ही वो आपके कितना भी क्लोज हो, आपका कितना भी अपना हो। हर एक शरीर के साथ, हर एक मानव की मानव के साथ सिर्फ भावनाएं बंधी होती हैं, यही सत्य है। भावनाएं हैं जो हमें एक दूसरे के साथ बांध के रखती हैं, एक दूसरे का अपना बना के रखती हैं। वरना यथार्थ तो ये है कि हम सब इस जीवन में अपनी कर्म भूमि में अपने कर्मों को अदा करने के लिए आए हैं, और उसके बाद हम सब आत्माएं परमात्मा में या तो विलीन होंगी या फिर एक बार फिर से जन्म लेकर अपने कार्यकाल को पूरा करने इस पृथ्वी पर उतर आएंगी। है ना ये सच? आइए इसी सच के नाम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये अगला गीत। सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन आधार।

श्रोताओं, ये था आज एक और जीवन आधार का सफर रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर, जिसे सताक्षी आज आपके लिए लेकर आई थी। इसी सफर में मेरी आपसे कल एक बार फिर से जरूर मुलाकात होगी। जीवन आधार कल सुनना मत भूलिएगा, और आज के सफर से अब लूंगी

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
7: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
8: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
9: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 04305258 96, दैट इज 04305258 96। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, नमस्ते, अदाब, सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज है 27th August की एक प्यारी सी ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग, उसमें आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी, जहां पे प्रोग्राम शुरू हो चुका है चांदने का सफर। और आशा करती हूँ आप सभी के बीच में और आप मेरे साथ, यानी आपके अपने दोस्त और होस्ट आर जे चांदनी जैन के साथ आज जरूर इंजॉय करेंगे। और जी, क्षमा याचना है आप सभी से कि अगर आपको एक ही

मुझे भी पता लगता रहे कि आपको क्या चीज अच्छी लग रही है क्या चीज नहीं, तो मैं आपकी पसंद के भी गीत यहाँ पर आपको सुनाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। तो आइए आज हम प्यारी सी सुबह को और भी खूबसूरत बनाते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, जो कि आप सुनेंगे लता मंगेशकर जी की आवाज में। सुनते रहिए रेडियो ब्रसवानी।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्बानी में। सो दोस्तों, सबसे पहले हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे ब्रिस्बेन की इम्पोर्टेंट अपडेट की, जो कि है ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ने सिटी के 21 काउंसिल स्विमिंग पूल्स में नॉन कंसेंशुअल रिकॉर्डिंग डिवाइसेस के यूज पर बैन लगा दिया है। और ये डिसीजन स्पेशली जो है AI ग्लासेस और दूसरे रिकॉर्डिंग डिवाइसेस से सीक्रेटली जो फिल्मिंग है उसको लेकर लिया गया है। आपको बता दें, अगर आप ब्रिस्बेन के पब्लिक पूल्स विजिट करते हैं, प्राइवेसी रूल्स का ध्यान जरूर रखिए। ऑस्ट्रेलिया में भी रेंटल स्ट्रेस भी एक बहुत मेजर इशू बना है, उसमें क्या बात है हाउसिंग अपडेट के बारे में जानेंगे थोड़ी ही देर बाद। आप बस जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्बेन में।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्वानी में। सो आइए इसी के साथ हाउसिंग अपडेट के बारे में बातचीत करते हैं। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कैपिटल सिटीज में एवरेज अपार्टमेंट रेंट अब सिंगल वर्कर्स की टेक होम इनकम का जो हाफ से भी ज्यादा है वो हो सकता है। नेशनली एवरेज अपार्टमेंट रेंट अराउंड $614 पर वीक जो है वो रिपोर्ट हुआ है। मतलब कि दोस्तों रेंट के बाद ना सेविंग करना ऑनेस्टली एक सेपरेट ओलंपिक स्पोर्ट लगने लगा है। जी हाँ, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

हाँ जी, इसी के साथ एक इमोशनल स्पोर्ट्स अपडेट आप सभी के बीच लेकर हाजिर हूँ। ब्रिस्बेन ब्रोंकोस के कैप्टन एडम रेनॉल्ड्स अपनी एनआरएल करियर को इंजरी के साथ एंड करेंगे। काफ इंजरी की जो वजह है उससे वो थर्सडे के मेलबर्न स्टॉर्म के अगेंस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे। अगर आपको बता दे ब्रिस्बेन की बात, तो ब्रिस्बेन फैंस के लिए ये डेफिनेटली एक इमोशनल मोमेंट होगा। दोस्तों, कुछ प्लेयर्स सिर्फ मैचेस नहीं जीतते, वो ना फैंस के हार्ट, दिल, उसमें भी जगह बना लेते हैं। इसी है जब कोई भी फैंस का, जो कहते हैं ना, किसी भी प्लेयर जो है और उनके फैंस है, तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब ऐसी कोई न्यूज सुनते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, हर चीज का एक कहते हैं ना, जरूरी नहीं है कि मैच से रिलेटेड हर चीज होती है। दिल में भी वो इंसान घर बना लेता है, जगह बना लेता है, तो इसीलिए उनसे रिलेटेड कुछ भी इश्यूज या चीज होती है ना, तो हर फैंस को दुख होता है। तो आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक, उसके बाद जानेंगे एंटरटेनमेंट वाइब्स क्या कहती है।

0: अमोरे मियो तो वे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्बेन में म्यूजिक लवर्स, एक इंटरेस्टिंग अपडेट आप सभी के लिए। ऑस्ट्रेलियन सिंगर सॉन्ग राइटर ऑडिट नवंबर में जो है इंटीमेट शोज के साथ रिटर्न कर रहे हैं। आपको बता दें उनका लेटेस्ट एल्बम ब्लिंक भी म्यूजिक लवर्स के बीच अटेंशन ग्रैब कर रहा है। और आपको बता दें कि म्यूजिक फेस्टिवल्स की बात अगर हम करते हैं तो दोस्तों लेनवे फेस्टिवल ने अपने 2027 एडिशन के टूर डेट्स भी अनाउंस कर दिया है। तो ब्रिस्बेन के म्यूजिक लवर्स 2027 का कैलेंडर भाई अभी से ही रेडी रखिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप सभी के लिए आने वाली है। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

नमस्कार, मैं सदाक्षी। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी 1701। हम आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। नेपाल बाढ़ में 105 भारतीयों समेत सैकड़ों लापता, बिहार यूपी के 10 जिलों में अलर्ट। नेपाल में बुधवार सुबह अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। तिब्बत सीमा से सटे नेपाल की रसुआ, थाडिंग और नुवाकोट जिलों में अचानक आए पानी के सैलाब ने कई गांवों, सड़कों और हाइड्रो पावर परियोजनाओं को तबाह कर दिया है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 17 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, वहीं ये आंकड़ा बढ़ सकता है। इसके साथ ही 105 भारतीय नागरिकों समेत सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल बाढ़ में सैकड़ों लोग लापता, अमित शाह ने सीएम सम्राट से की बात। नेपाल में तिब्बत की सीमा से लगे इलाके में अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। इस बाढ़ में 384 यात्री लापता हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने बताया कि इन लापता लोगों में 105 भारतीय शामिल हैं। नेपाल में मूसलाधार बारिश और ग्लेशियर फटने से बिहार में बाढ़ के खतरे को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से फोन पर बात की। गृह मंत्री ने संभावित संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए NDFR अलर्ट है। रूस के गैस प्लांट में भीषण आग लगने से 6 चीनी नागरिकों समेत 7 लोगों की मौत, 9 लापता। रूस के सुदूर पूर्वी अमूर इलाके में एक गैस केमिकल कॉम्प्लेक्स में भयानक आग लग गई। इस हादसे में 6 चीनी नागरिकों समेत 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 9 लोग लापता हैं। प्लांट ने टेलीग्राम पर जानकारी दी कि अमूर गैस केमिकल कॉम्प्लेक्स में आग लग गई थी, जिसे बुझा दिया गया है। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। पहाड़ों को चीर कर नदियों से होकर दौड़ेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य ठाणे और पालीघर जिलों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, नदियों और मुख्य ट्रांसपोर्ट रूट से गुजरने वाले इस प्रोजेक्ट का 135.45 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड हिस्सा बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें 124.027 किलोमीटर वायडक्ट और पुल शामिल हैं। नेपाल बाढ़ में 17 की मौत, पीएम मोदी ने बालिन शाह से की बात। उफान पर गंडक नदी। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने समकक्ष बालिन शाह से फोन पर बात की और बाढ़ से हुए जान माल के नुकसान पर दुख जताया। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में नेपाल में अपने भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। भारत नेपाल को हर मुमकिन मानवीय मदद देने के लिए तैयार है। भारतीय टीमें बचाव और राहत कार्यों में मिलकर काम कर रही हैं। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ओके नोटी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं और आज वैसे मैं बहुत खास कुछ नहीं लाया हूं, लाया था लेकिन
1: लेकिन डॉट डॉट
0: एक आंकल एक आंकल लंदन देख रहा है टोक्यो खैर चलो आगे बढ़ते हैं। आज गाना ही आपको ज्यादा सुनने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है, और उम्मीद है अनलेस अनलेस एमी यू डू इट।

0: और कभी आपको ऐसा लगता है दोस्तों कि जल्दी से रात बीत जाए या जल्दी से दिन बीत जाए? आज मुझे ऐसे लग रहा है। ये गाना,
1: Why would you say that?
0: ये गाना मुझे, क्योंकि मुझे गाने का आज कोई रूप नहीं है, गाता है मेरा दिल। ओह माय गॉड। खैर चलो दोस्तों,

0: आज वन आईड बेंडेड है मैं,
1: वन आईड बेंडेड,
0: और अबीता के ऊपर है आज शो. लेकिन चलिए, जो गीत मैं बजाना चाहता था अमिता, लो ये भी कहाँ चला गया, वो था मालूम नहीं, ऐसे कुछ थोड़ा हो रहा था तो मैंने सोचा ये गाना बजा दूं. चलो शायद आपको अच्छा लगे, इसके बाद में यू कैन प्ले.
1: यप यप.
0: ओ हो अगेन इज हैपनिंग.

0: गोरा कागज था ये मन मेरा, किसने क्या लिख दिया, लिख दिया नाम इसमें तेरा, क्या क्या वर्ड्स है, अरे यार एक्सप्रेस करने के लिए सब कुछ
1: I'm not okay then.
0: You're not gonna touch that with a 10-foot pole, are you? okay. आज आप भी थोड़ा कुछ रिक्वेस्ट करो दोस्तों. एक रिक्वेस्ट आया है. और you wanna play a song before I play this? I have to look for it.
1: Hey?
0: I have to look for that song.
1: Okay. Can you see?
0: I don't know. Yeah.
1: Okay. I'll play a song in the meantime.
0: Can you see?
1: It's a fair question. Okay.

0: आज हम ज्यादातर पुराने गीत लेकर आएंगे दोस्तों। और चलिए देखो, बात ऐसे है कि आज मैं पूरा फंक्शनल नहीं हूँ। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक है।
1: सब कुछ ठीक ठाक है। चलिए, I don't think so.
0: चलिए एक रिक्वेस्ट है, और आई होप दिस इज द राइट वन। प्रेमा जी,

0: जी हाँ दोस्तों, 1965 मूवी खानदान का गीत अभी आपने सुना, सुनील दत्त और माय फेवरेट नूतन। तो चलो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और प्रॉब्लम ऐसा है कि एक ग्लास में एक लेंस मेरा खो गया, इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है सब देखने में। खैर कोई बात नहीं, तो लगा है, है कि नहीं?
1: लगा है।
0: आई गॉट माय
1: यू बेटर फाइंड दैट एडवर्ट, लगा
0: लगा लगा,
1: यू बेटर फाइंड दैट वाज माय फेवरेट एड ऑफ ऑल टाइम।
0: आई नो। ओके, व्हाट यू प्ले नाउ?
1: ऑल राइट, आई प्ले दिस वन सॉन्ग एंड देन आई वांट टू जस्ट से समथिंग अबाउट म्यूजिक। ओके
0: ओके,
1: आफ्टर आई प्ले दिस सॉन्ग।

0: चलो Happy days.
1: Yes, म्यूजिक पर हम बात कर रहे थे दोस्तों, गाना वगैरह सब कुछ. तो कभी आपके साथ ऐसे हुआ कि आप कुछ कर रहे हैं फिर आप गाना गुनगुनाने लगे, शायद कोई पर्टिकुलर गाना नहीं हो, जस्ट यू जस्ट सॉर्ट ऑफ बेल्टेड आउट अ ट्यून.
0: आई नो इट डज. यस इट डज.
1: Yeah,
0: ऑल द टाइम.
1: हाउ डज दैट हैपन?
0: आई डोंट नो, इट जस्ट ऑलवेज हैपनिंग.
1: एनीवे, व्हाट एल्स? याद रखना सताक्षी रहेंगी इस कार्यक्रम के बाद में. और व्हाट टाइम इज इट? आई कांट सी द टाइम.
0: इट्स 8:15. सॉरी, आई डोंट मीन टू लाफ एट यू. इट्स जस्ट when you ask me what time it is, I can't see the time.
1: No. What is it?
0: 8:15 a.m. here in Brisbane.
1: Okay. And we are live.
0: We are alive.
1: And alive.
0: We are alive. Okay, the Ipswich motorway, the Riverview hazard that was westbound has been cleared up. Everything's cleared. I mean, rightly so, given the time. It's 8:15, so all the traffic time is... peak hour traffic has moved on. Yes. The weather is the same. No change there.
1: We just changed a little bit by a few minutes.
0: It has gone warmer. Do you know it is 4 degrees warmer than when we started?
1: Yeah.
0: So it is warming up.
1: It's very pleasant.
0: It is pleasant. It's absolutely pleasant.
1: Yes.
0: Yep.
1: Okay, dosto.
0: So.
1: Okay, you're going to play a song?
0: Yep.

और दोस्तों आज मेरे ओर से कुछ बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा अंडर द सर्कमस्टेंसेस, बट एक गाना मैंने चूज किया है जिसके बारे में हम कुछ चर्चा किए हैं अभी पहले। ठीक है, चलो सुनते हैं।

0: काम करती नहीं, रात दिन करती तैयारियां लड़ने की. यू हैड आई डिडंट से दैट, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट सॉन्ग सेड दैट.
1: व्हाट यू सेड?
0: आई डिडंट से एनीथिंग.
1: डोंट लाई.
0: व्हाट डिड आई से?
1: व्हाई डोंट यू से इट ऑन एयर व्हाट यू सेड?
0: व्हाट डिड आई फॉरगॉट?
1: आई डिडंट से एनीथिंग.
0: आई फॉरगॉट. व्हाट डिड आई से?
1: यू सेड यस, यू एग्रीड टोटली, एंड आई सेड यू लिविंग इन.
0: नो, आई डिड नॉट एग्री.
1: Got your own reality in your head.
0: I didn't agree with that. Yeah. Come on.
1: Oh, yeah, right. Don't lie.
0: Maybe something like
1: Don't
0: that, but not quite
1: listeners.
0: That way.
1: You're such a liar, man.
0: No, liar. Don't say me liar on air. I'm not a liar. I just said, पहले के ज़माने में ऐसे लोग करते थे, लिखते थे, गाते थे.
1: But
0: it's just a fun. It was a fun. I mean, of course, ladies always work. What are you talking about? Of course they always work. Of course they always fight. Come on, men fight too. Huh?
1: Let's continue. We only have 25 minutes. I've got a request. Should I play my request?
0: Play your request. Play your request. I don't have a song.
1: You don't have a song?
0: No, I'm very hard.
1: Oh,
0: okay.
1: Okay, here's for Chris and Vinny.
0: Okay, for Chris and Vinny. Oh, nice.

0: जी हाँ दोस्तों, चलो दो तीन गाना और हम कोशिश कर रहे हैं इसमें, और उम्मीद है कि आज का जो प्रोग्राम है आपको पसंद आया होगा, और थोड़ा कुछ पुराने यादें हम आपको लेकर जा रहे थे।
1: सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूँ, और गाने में ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कुछ रहना हो तो मानो मेरी बात।

0: जी हाँ, कुछ ट्विस्ट ट्विस्ट सुना आपने, और अब चलो ये कितना, ये आखिरी गीत है?
1: नहीं नहीं
0: नहीं,
1: इट्स 10 to, सो मे बी आई विल स्क्वीज इन टू इफ वी कैन. ओके,

0: ओके, अब हमारा यहाँ से जाने का वक्त हो गया दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने साथ दिया। इसके बाद में सताक्षी है, 11 बजे से संदेश है, 3 बजे से निव्या है, ठीक है?
1: ओके, दैट वाज वेरी क्विक, आई मस्ट से।
0: या, आपने कहा था जल्दी से।
1: नमस्ते एवरीवन, वी Wonderful weekend.
0: Okay.
1: And for those celebrating Raksha Bandhan, happy Raksha Bandhan for tomorrow. And with the song, we're gonna leave.

गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक रेडियो प्रस्थानी पर एक बार फिर से आप सताक्षी के साथ और मेरे साथ अब आप सुनने जा रहे हैं अपनी सुबह का सबसे बेहतरीन शो। ये शो है आपके अपने ब्रेकफास्ट का शो इट हैपेंस। बेहतरीन इसलिए मियां मिट्ठू हम अपने इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हम इस शो में आपसे बात करते हैं आपकी जिंदगी की, आप जो पाना चाहते हैं उसकी और जो आपके लिए जरूरी है उसकी भी। और इसके साथ ही साथ हम इस शो में प्ले करते हैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मॉर्निंग नंबर्स। तो चलिए, जब इतना प्यारा इतना खास शो है तो भला देर किस बात की है। अगले ट्रैक के साथ बढ़ते हैं सफर में आगे। के प्लस रेडियो ब्रिस्वानी सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस।

वेलकम बैक रेडियो ब्रिस्वानी पर सताक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। दोस्तों आगे बढ़ना है, ढेर सारी बातें भी आपके साथ करनी है, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे आज के उस विश के साथ, उस खास सेगमेंट के साथ जिसमें हम उन्हें विश करते हैं जिनके लिए आज का दिन खास है। सो जिनका आज है हैप्पी बर्थडे, उन सबको उनके बर्थडे की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। जी हाँ, हम यही तो चाहते हैं कि आपकी सारी जिंदगी खुशियों से भरी रहे, आबाद रहे, और यही हमारी विश भी है आज आपके लिए, और आपके लिए हमारा गिफ्ट भी है। जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास इसलिए है क्योंकि आज उनका जीवन साथी उन्हें मिला था। ये साथ जो है, सात जन्मों का, ये आज के दिन ही जो है वो बंधा था। सो आपको आज के दिन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। आप यूं ही जिंदगी के कदमों से कदम मिलाकर चलते रहें और एक साथ चलते रहें। इसी विश के साथ अब हम विश करेंगे उन्हें भी जिनके लिए है आज का दिन स्पेशल और खास। सो आपको आज के दिन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। यकीन मानिए, आप जो भी चाहते हैं वो जरूर मुकम्मल होगा क्योंकि आपकी ख्वाहिश सच्ची और साफ दिल की है। आइए इस अगले ट्रैक के साथ बढ़ते हैं सफर में आगे। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्वानी, सुनते रहिए हमारे साथ इट हैपेंस।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660।
1: क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.

हम सुन रहे हैं आप सुताक्षी के साथ 3 जुपरस्वानी 1701 एम पर। जी हाँ, आपका अपना ब्रेकफास्ट शो आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। अभी कही एक बहुत ही बढ़िया लाइन पढ़ी तो उसका शेयर करना आपसे बड़ा लाजमी सा लगा, तो कर लेते हैं भाई। कुछ यूं था कि बहुत फर्क पड़ता है फर्क ना पड़ने से पहले। हाँ, बहुत फर्क पड़ता है फर्क ना पड़ने से पहले। यू नो, कई बार हम उस सिचुएशन में आ जाते हैं जहां हम कहते हैं कि यार बस आप हमें किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन सच तो ये है कि उसके पहले हमें इतना बुरा लगा है या हमें इतना बुरा लगवाया गया है कि आज अब हमें किसी बात से, किसी के एहसास से, किसी के हमें छोड़ के जाने से, किसी के हमारी जिंदगी में रहने न रहने से, कई चीजों से हमें फर्क पड़ना बंद हो जाता है। तो कई बार आप टूटते हैं खुद को समेटने से पहले, ये याद रखना बड़ा जरूरी हो जाता है कई बार जिंदगी में, है ना। तो बस इसी बात पर एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस सिर्फ और सिर्फ रेडियो प्रिस्वानी 1701 एम पर।

मॉर्निंग में हमें एक बढ़िया सा काम जरूर करना चाहिए, और मुझे लगता है हर एक सुबह इस बात के लिए रेडी होकर आती है कि हम लेट गो करना सीखें। यू नो, लेट गो करने के लिए हम कभी कभी कुछ लोग ये समझते हैं कि यार इसने लेट गो कर दिया, डेट मीन्स अब उस बंदे के साथ आपका रिलेशन जो है वो फिर से ठीक हो जाए, उन लोगों के साथ आप फिर से ठीक हो जाए और वापस आप उनके साथ उस रिश्ते को कैरी फॉरवर्ड करें, आप आगे बढ़ाएं। बट देखा जाए तो लेट गो करने का ये मतलब नहीं है कि आप उस इंसान को माफ करके आप उस रिश्ते में आगे ही बढ़ें। लेट गो करने का सीधा मतलब है कि भाई अब आपके मन में उस इंसान के लिए कोई गुस्सा नहीं है, कोई नफरत नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रहा अब उसके साथ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ ही उस रिश्ते में फिर से आगे बढ़ें। कभी कभी लेट गो करके हम अपने लिए कुछ बाउंड्रीज सेट कर लेते हैं, अपनी जिंदगी को सेट कर लेते हैं, और फिर जरूरी नहीं है कि उसी बंदे के साथ वो रिश्ता जो है वो हम आगे लेकर चलें। तो सबसे पहले लेट गो करने से पहले लेट गो का मतलब समझना बहुत जरूरी है। एक और ट्राई किसी बात पर सताक्षी के साथ एंजॉय कीजिए। 107.1 FM।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द
3: वेलकम बैक रेडियो ब्रिस्बेन पर साक्षी के साथ आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। आइए बढ़ते हैं गानों के हैट्रिक की ओर। जी हाँ, 3 बैक टू बैक ट्रैक्स एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई है साक्षी। और ये गाने जो है ये एक बार फिर से सदाबहार गाने हैं, बॉलीवुड के वो गाने हैं, हमारे वो मॉर्निंग ट्रैक्स हैं जिन्हें आप हमेशा सुनना पसंद करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्बेन, हमारे साथ सुनते रहिए गानों के हैट्रिक। ये पहला ट्रैक है आपके लिए।

बैक टू बैक ट्रैक्स का हमारा सफर गानों की हैट्रिक इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ। गानों की हैट्रिक का ये लास्ट ट्रैक और इसके बाद होंगी ढेर सारी बातें आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं अभी गानों की हैट्रिक का ये

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट
1: तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

टैपन सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रीजु ब्रिस्वानी 1701 एम पर. यू नो रिलेशनशिप में सबको सिर्फ फिजिकल टच, फिजिकल रिलेशन ही नहीं चाहिए होता है. कई बार एक इंसान की डिमांड कुछ और भी होती है कि कोई हो इस दुनिया में जो बिना उसके कहे महसूस कर ले कि उसका मूड कैसा है, बिना उसके कहे ये जान ले कि उसे क्या चाहिए, बिना उसे कहे उसे समझने की कोशिश करे, जो सिर्फ बैठ कर उसे सुन ले, बिना मतलब उस पर जजमेंट ना थोपे अपना, है ना. कई बार हमें एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो हमारी मुस्कान के पीछे छुपे आंसुओं को समझ पाए. तो हाँ, अगर आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा है तो आप बहुत लकी और बहुत स्पेशल हैं. और आपके नाम ही अगला ट्रैक, इनफैक्ट उस बंदे के नाम है ये ट्रैक. इसे सुनिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए. इट हैपेंस सिर्फ और सिर्फ रेडियो प्रिस्वानी 1701 एम पर.

अच्छा, मकान बनने से पहले, एक जब भी आप कोई घर बनवाते हैं, अपने जिंदगी का आशियाना बनवाते हैं, तो उसे बनवाने से पहले नींव खोदी जाती है ना, खट्टा खोदा जाता है, और इसके बाद उस नींव से मजबूत मकान खड़ा होता है। ऐसे कभी कभी हमारे साथ भी होता है दोस्तों, जिंदगी में कई बार हमें लगता है कि अब बहुत नुकसान हो गया, हम बहुत खड्डे में गिर गए हैं और अब कैसे निकलेंगे इससे। कभी कभी ऐसा इसलिए होता है ताकि आपका फाउंडेशन मजबूत किया जा सके, ताकि आपको मजबूती दी जा सके, और उसके बाद कहते हैं ना कि एक नव निर्माण होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है आपका, और उसके बाद आप एक जब नए इंसान बनते हैं तो आप काफी सूझबूझ के साथ, नई प्रायोरिटीज के साथ आप जिंदगी में ग्रो करते हैं। तो हमेशा नुकसान का मतलब जिंदगी का खत्म होना नहीं है, इस बात को समझना भी बहुत जरूरी है। और इसी बात पर है ये अगला ट्रैक, इसे भी इंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए। इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर।